किसे कहते हैं? एक तो हमारी मेमनी में कहते हैं गजर गाजर को, वो गजर नहीं, गजर कहते हैं घड़ियाल को, बड़ा घड़ियाल नहीं होता छोटा, तंग तंग बजता है जो, अब तो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक दौर आ गया है, बगैर आवाज के टी टी टी टी टी धड़का सा कर देते हैं, पता चलता है 3 बज के 4 बज के, बड़ा फास्ट दौर आ गया ना, पहले तो घड़ियां होती थी बड़ी बड़ी, और हमें याद है जब छोटे चाबी भरते थे उसके अंदर, दरवाजे पे चढ़ के ऊपर चाबी भरते थे, एक दिन में एक मतलब तब वो 24 घंटे चलती थी, सुबह भी यही बातें हो रही थी बचपनों की। तो मैं कह रहा था गजर कहते हैं उस घड़ियाल को जब बजती है, तो जब आला हजरत को ये मुजदा किसने दिया होगा कि चलो मदीन चलते हैं, उस घड़ी ने इशारा किया होगा कि इतने बजे चलना है, और इतने बजे घड़ी ने बजाया होगा घंटे, तो आला फरमाते हैं कि चुभती हुई खुबती हुई नजर में अदा किस सहर की है, चुभती हुई जिगर में सदा किस

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: It's 9 AM. This time check is brought to you by
4: Al Habib Current Plus Account. भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक Al Habib, रिश्ता भरोसे का।
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.
6: गिलगित बल्तिस्तान असेंबली जी 24 सीटन ते चूंड लाए पोलिंग का पोए वोटन जी गणपत जो सिलसिलो जारी 24 मां 18 सीटन जा गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा पत्रा पीपल्स पार्टी नव मुस्लिम लीग नून ब MWM हिक ऐं आज़ाद उम्मीदवार छहन सीटन ते कामयाब हुकूमत ठाहिण लाइ कंहिं बि पार्टी इतिहाद खे 17 सीटन ते कामयाबी हासिल करणी पवंदी 9,58,480 वोटरनि पंहिंजे वोट जो हक जो इस्तेमाल कयो चीफ इलेक्शन कमिश्नर शहबाज़ ख़ान जो चवणु आहे त गिलगित बल्तिस्तान में चूंडूं पुरअमन माहौल में थियूं आहिनि चूंडनि में भरपूर नमूने हिसो वठण ते आवाम जा थोरायता आहिनि पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो आहे त गिलगित बल्तिस्तान में तीरन जी बरसात थी रही आहे पीपल्स पार्टी सब खां वॾी जमात बण जी उभरी रही आहे हू हुकूमत सासी लाइ कोशिशूं कंदा भरपूर एतमाद करण ते गिलगित बल्तिस्तान जी आवाम जा थोरायता आहिनि बैरूत हमले जो बदलो ईरान जे इसराइल ते मिसाइलनि जी बरसात ईरानी मीडिया मूजिबि हिफ़ा इसराइल जे उत्तरे इलाइक़नि ते मिसाइल फायर कया विया पासदारनि इनकलाब जो चवणु आहे त इसराइल ते हमिलो हिकु वार्निंग हो ॿीहर अगराई थी त वधीक सख़्त जवाबु ॾिनो वेंदो इसराइल लबनान में हमला रोकण वारी शर्त ते अमल नाहे कयो अमरीकी सदर ट्रंप जे मना करण बावजूद इसराइल जा ईरान ते जवाबी हमला ईरानी मीडिया जो चवणु आहे त तहरान में धमाकनि जा आवाज़ ॿुधा विया आहिनि अस्फान ऐं तबरेज़ में बि केतिरनि ई धमाकनि जो आवाज़ ॿुधो वियो इसराइल जो चवणु आहे त ईरान जे ओलह ऐं सेंट्रल वारनि इलाइक़नि खे निशानो बणायो आहे कार्रवाई ईरानी हमले जे जवाब में कई आहे इसराइली फ़ौज तरफ़ां लबनान में फ़ौजी कार्रवायूं जारी रखण जो ऐलान तमामु मिसाइल फायर कया बसि एतिरो काफ़ी आहे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान खे मशवरो संदसि चवणु आहे त अमरीकी फ़ौज अलर्ट आहे ईरान मेज़ ते वापसि अचे ऐं मुआदो करे हू इसराइली वज़ीर आज़म खे फ़ोन करे चवंदो त जवाबी हमला न करे इसराइल पारां बैरूत ते थियल हमले ते ख़ुशि नाहे ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राग़ची जा बरतानिया तुर्की ऐं पाकिस्तान जे आला अमलदारनि सां टेलीफोनिक राब्ता अब्बास राग़ची जो चवणु आहे त पाकिस्तान जे फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे हुन अमरीका ईरान विच में टाकरे लाइ कोशिशुनि में अहम किरदारु अदा कयो बरतानवी ऐं तुर्क परडे॒ही वज़ीरनि सां बि राब्ता थिया रावला कोर्ट में पाबंदी मढ़ियल एक्शन कमेटी जे विगोड़न जी फायरिंग में कानून लागू कंदड़ इदारे जा चार अहलकार शहीद 20 खां वधीक ज़ख़्मी आईजी जम्मू आज़ाद कश्मीर पारां वाक़िए जी मज़म्मत संदसि चवणु आहे त पाबंदी मढ़ियल एक्शन कमेटी जी शिरपसंदनि रिथाबंदी करे अहलकारनि खे निशानो बणायो पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी अॻवाणी में पीपल्स पार्टी वफ़द जी हुकूमती टीम सां मुलाक़ात पीपल्स पार्टी तरफ़ां वफ़ाक़ी मनसूबनि ते ख़र्चा ज़ाहिर नायब वज़ीर आज़म सालदार पारां बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे बजट ते ख़र्चा ख़तम कराइण जी ख़ातिरी पीपल्स पार्टी तरफ़ां कराची ऐं हैदराबाद लाइ वफ़ाक़ी मनसूबनि जो अंग वधाइण जो मुतालबो पीपल्स पार्टी बजट बाबति पंहिंजूं लिखत सिफ़ारिशूं वफ़ाक़ी हुकूमत हवाले करे छॾियूं पेट्रोलियम लेवी सब्सिडी जे मुकमल ख़ात्मे ते बि पीपल्स पार्टी जा ख़र्चा बरक़रार पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ु आहे त कराची जे समूरनि मनसूबनि लाइ फंड वफ़ाक़ी सरकार अदा करे सालियाने तरक़ी प्रोग्राम जे काथे में बि इज़ाफ़ो कयो वञे उत्तर वजीरिस्तान में 72 कलाकंद दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में भारतीय हिमायती 27 खारजी दहशतगर्द मारजी वया। ISPR मूजिब सिक्योरिटी फोर्सेज इंटेलिजेंस इतलान की बुनियाद से मीरान शाहवार इलाके में कार्रवाई कई। मारजी वाल दहशतगर्दन के कब्जे में हथियार धमाकेदार मादो हथ इलाके में क्लियरेंस सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। नए तेरे वेझो हथियार बनने की फायरिंग में नौजवान कतल एक जणो जख्मी गोठ गुलन के हो में जवाबदार फायरिंग करे सिंगार के हो के कतल कर छो गोलियों लगन सब फयाज से हो जख्मी। आई कंबर वेझो बिरोही बिरादरी के बिन धुरन में जेड़ो एक जणो कतल एक जख्मी गोरताज मोहम्मद की वांड में बिरोही बिरादरी के बिन धुरन विच में जेड़ो थी पयो फायरिंग में किफायतुल्ला बिरोही मारजी पयो संदस सोट खलील रोही सख्मी।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: Yahoo jawabi hamla. कंदो त इहो सिलसिलो ईअं ई हलंदो रहंदो नेतन्याहू ट्रंप खे ईरान ते हमला करण जे इरादे खां आगाह कयो हो सदर ट्रंप जवाब ॾिनो त हमला कया विया त अमेरिका इन में हिसो न वठंदो नेतन्याहू वटि ईरान सां मुआदो क़बूल करण खां सवाइ ॿियो को बि रस्तो न आहे हमलनि अमरीका ईरान ॻाल्हियूं मुकमल करण जी ख़्वाहिश आहे खे तब्दील नाहे कयो अमरीकी सदर जो बरतानवी अख़बार फाइनेंशियल टाइम्स खे इंटरव्यू ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राखची जा बरतानिया तुर्किया ऐं पाकिस्तान जे आला अमलदारनि सां टेलीफोनिक राब्ता अब्बास राखची जो चवणो आहे त पाकिस्तान जे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे हुन अमरीका ईरान विच में टाकड़े अलाए कोशिशुनि में अहम किरदारु अदा कयो बरतानवी ऐं तुर्क परडे॒ही वज़ीरनि सां बि राब्ता थिया गिलगित बल्तिस्तान असेंबली जे चूंडनि में पीपल्स पार्टी मैदान मारे वरितो 24 मां 18 सीटनि जा ग़ैर सरकारी ग़ैर हतमी नतीजा पधरा पीपल्स पार्टी 9 सीटूं खणी सभ खां अॻिते मुस्लिम लीग नून 2 MWM 1 ऐं आज़ाद उमेदवार 6 सीटनि ते कामयाब हुकूमत ठाहिण लाइ कंहिं बि पार्टी या इतिहाद खे 17 सीटुनि ते कामयाबी हासिल करणी पवंदी

पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में देर जो शिकार समूरन नतीजे जो ऐलान करण जो मुतालबो कर छो। पीपल्स पार्टी अगवान नियर बुखारी है त पीपल्स पार्टी की बरतरी के तकरारी बढ़ाने लाए नतीजा तब्दील किया पाया वन केतर ही तकन में कामयाबी बावजूद नतीजा रोकया पाया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है तो गिलगित बल्तिस्तान में तीरन की बरसात थी रही है। पीपल्स पार्टी सब का वही जमात बनजी उभरी रही है। वो हुकूमत साजी लाए कोशिशू कंदा पर पूरा एतमाद करण गिलगित बल्तिस्तान की अवाम जहा थोराता है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है, कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सां हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: GAFM 88
3: नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जदीद मशीन जरिए चेकअप करायो होम्योपैथिक तरीके इलाज सा शिफा हासिल करो। जी हाँ, हाँ अवाजे पेंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अद मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इनन सबनिन बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 AM खां शाम 6 AM ताई परोज जुम्मो 12 AM ताई एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ए राबते जे लाए 0327-99-84-763।
3: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो GFM 90.8।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: जी FM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़। अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
3: कामयाबी हासिल करे वरती पीपल्स पार्टी कारकुनन जो जशन जीबीए एक गिलगित ते पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अमजद हुसैन 10594 वोट खटे कामयाब जीबीए चार नगर एक ते पीपल्स पार्टी जो मोहम्मद अली अख्तर 7654 वोट खटे कामयाब थी वयो जीबीए पंज नगर ते पीपल्स पार्टी उम्मीदवार जुल्फकार अली मुराद 2705 वोट खणी कामयाब जीबीए सतस्करदू एक ते पीपल्स पार्टी जो सैयद तौकीर मेहदी 4637 वोट खणी कामयाब जीबीए नवस्करदू टे ते पीपल्स पार्टी उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नाशा छह हजार 314 वोट खणी कामयाब थी वयो जीबीए 10 स्कर्दू 4 ते पीपल्स पार्टी जो नासिर अली खान 6582 वोट खणी कामयाब जीबीए 11 क्रेमिंग ते पीपल्स पार्टी उम्मीदवार इकबाल हसन 5944 वोट खणी कामयाबी माणी जीबीए 12 शकर ते पीपल्स पार्टी उम्मीदवार इमरान नदीम 12944 वोट खणी कामयाब थी वयो जीबीए 18, 20, 22 ते नून लीग उम्मीदवार कामयाब करार जीबीए 8 ते एमडब्ल्यूएम जे उम्मीदवार कामयाबी माणी जीबीए 3, 6, 21, 23, 24 ते आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 11:50 a.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: सालगिरह है उनको कहेंगे मैंने मैंने यहाँ पे रिटर्न तो नहीं हैप्पी बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गुड वेल सून. जो लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ नहीं कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आमीन सुमा आमीन. इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शोबारों शहरों और शराहों वाली और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी इसे कहेंगे जिंदगी गुलजार है. प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें हम आपसे करेंगे. प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना और प्रोग्राम का पहला गाना होगा
3: फकीरानी.
2: ये वाला सुनेंगे एंजॉय करेंगे आगे चलेंगे स्टे ट्यून्ड.

जी प्रज्ञा में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं 3 तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है जो के है, सिंपली आपने सर्च करना है GFM 88 को सर्च करने के बाद आपको मिलती है पोस्ट. उसके नीचे आप लोग गवर्नमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं आप लोग मुझे और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा. 2 सेगमेंट्स में आप लोगों की लाइव कॉल्स को रिसीव किया जाएगा, जिसमें से पहला सेगमेंट होगा सुर लगाओ गाना सुनाओ. और सुर लगाओ गाना सुनाओ में आप एक अदद गाना सुनाएंगे, वो गाना उसी टाइम पर प्ले कर दिया जाएगा. इसके अलावा जो हमारा दूसरा सेगमेंट होगा वो होगा बोलो तो माने, जो कि अगले घंटे में हम कर रहे होंगे. और अगले घंटे में जब हम कर रहे होंगे सेगमेंट, तो उसमें एक अदर टंग ट्विस्टर होगा जो कि आप कह के दिखाएंगे, ठीक है? तो ये करेंगे हम, गाना सुनेंगे हम.

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हैरतअंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं परोस जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार। क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: संतुष्ट ये है कि तानिया ने धीरे धीरे दाल देगची में डाली ठीक है, ये कहना है। दानिया ने धीरे धीरे दाल देगची में डाली और ये कह के दिखाएंगे, और ये कहने के बाद ना जो बंदा सही सही अच्छा अच्छा कहेगा वो विन कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर, हेलो, वालेकुम अस्सलाम सरदर, कैसे हो?
1: बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे?
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ। जल्दी से गाना सुना दो।
1: जल्दी से?
0: हाँ जी जल्दी है। थोड़ा सा लाउडली सरदर्द, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब ठीक आ रही है। ओके, अच्छा सरदर मुझे इसका नाम भी बता दो, मुझे गाना समझ नहीं आया। सॉरी दोबारा बताओ।
1: प्यार का वादा ऐसे निभाए।
0: ओके ठीक है, किसी को डेडिकेट करना है? कुछ करना है?
1: हाँ बस मुझे डेडिकेट।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखो सरदर, अल्लाह हाफिज। जी लास्ट में हम प्ले कर रहे हैं, मतलब कि न्यूज ब्रेक पे जाने से पहले प्ले कर रहे हैं सरदर्द की रिक्वेस्ट को, सुनेंगे एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे। न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड।

गिलगित बल्तिस्तान जे 24 मां 18 सीट्स जा गैर हतमी ऐं गैर सरकारी नतीजा अची विया। पीपल्स पार्टी 9 सीट्स ते कामयाबी सां सभिनी खां अॻिते, पंज आज़ाद उमीदवार बि कामयाब। नून लीग 3 ऐं MWM 1 सीट ते कामयाबी हासिल करे वरिती। पीपल्स पार्टी कारकुननि जो जशन। GBA 1 गिलगित ते पीपल्स पार्टी उमीदवार अमजद हुसैन 10,594 वोट खटे कामयाब। GBA 4 नगर ते 1 पीपल्स पार्टी जो मोहम्मद अली अख्तर 7,654 वोट खणी कामयाब थी वियो। GBA 5 नगर 2 ते पीपल्स पार्टी उमीदवार ज़ुल्फ़िकार अली मुराद 2,705 वोट खणी कामयाब। GBA 7 तस्करदू 1 ते पीपल्स पार्टी जो सैयद तौकीर मेहदी 4,337 वोट खणी कामयाब। GBA 9 तस्करदू 3 ते पीपल्स पार्टी उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नाशाद 6,314 वोट खणी कामयाब थी वियो। GBA 10 तस्करदू 4 ते पीपल्स पार्टी जो नासिर अली खान 6,582 वोट खणी कामयाब। GBA 11 क्रिमिंग ते पीपल्स पार्टी उम्मीदवार इकबाल हसन 5,994 वोट खणी कामयाबी माणे वरिती। GBA 12 शकर ते पीपल्स पार्टी उम्मीदवार इमरान नदीम 12,944 वोट खणी कामयाब थी वियो। GBA 18, 20 ऐं 22 ते नून लीग उम्मीदवार कामयाब करार। GBA 8 ते MWM जे उम्मीदवार कामयाबी माणी। GBA 3, 6, 21, 23, 24 ते आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार।

गिलगित बल्तिस्तान में तीर जी बरसात हली रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सभी का वही पार्टी बणजी उभरी है। अस हुकूमत ठाण की कोशिश कदे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो ट्वीट। बिलावल भुट्टो जरदारी एतमाद करण से आवाम जो थोरायतो आया। पीपल्स पार्टी अगवान नैयर बुखारी है तो गिलगित बल्तिस्तान में अवामी मैंडेट से धाड़ो हण के मुनजिम साजिश कई पी वे जिन तकन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरियल रात ही खटे चुकी हुई उन नतीजा जानी वाणी रोकया पा वन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाजिब भर्तरी के तकरारी बनाने ला नतीजा रोकण ए तब्दील कर कोशिश कई पी वे। इलेक्शन कमीशन नतीजन के ऐलान में देर छो पी कर मैंडेट चोराण की कोशिश बंद नी तो एहतजाज कदासी।

क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो अॼु थींदड़ इजलास मुलतवी ज़रियनि जो चवणु आहे त हुकूमत ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विच में मुआमलात तइ न थियण सबबि इजलास मुलतवी कयो वियो। इजलास सुभाणे थियण जो इम्कान आहे। इजलास में ईंदड़ माली साल जे क़ौमी तरक़ियाती बजट मंज़ूरी लाइ पेश कई वेंदी। सालियानी बजट 10 जून ते पेश कई वेंदी।

इसराइल ते बैलिस्टिक मिज़ाइलनि सां हमिलो पासदारनि इनकलाब चयो आहे त वार आयल फ़लस्तीनी इलाइक़नि में इसराइल जे ॿिनि हवाई अॾनि खे निशानो बणायो वियो. इसराइल जे ईरानी मिज़ाइल हवाए नाकारा बणाइण जी दावा. इसराइली फ़ौज जो चवणु आहे त ईरान जे ॾखण ओलह में वाक़े शहर माश शहर में हिकु पेट्रोकेमिकल ठिकाणनि खे अहम हंधनि खे निशानो बणायो. तहरान, तब्रेज़ ऐं इस्फ़हान में बि धमाकनि जा आवाज़ ॿुधा विया. अरब मीडिया मूजिबि यमन खां बि इसराइल ते मिज़ाइल हमला कया विया. ईरान, इराक ऐं इसराइल पंहिंजूं हवाई हदूं बंदि करे छॾियूं.

ॿिन्ही पासनि खां कार्रवाई थी चुकी, वधीक अमलनि जी ज़रूरत न आहे। ट्रंप जी नेतन्याहू खे ईरान ख़िलाफ़ कार्रवाई खां पासो करण जी हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त अमरीका ईरान सां हिकु हतमी मुआहिदे जे वेझो आहे ऐं नथा चाहियूं त मौजूदा सूरत हाल अहिड़े अमल खे मुतासिर करे। इसराइल ईरान खे जवाबु ॾिनो त तकरार डिघे अरसे ताईं जारी रही सघे थो।

ऐं ईरान ऐं इसराइल जे हिक ॿिए ते हमलनि बाद आलमी मार्केट में तेल जूं क़ीमतूं वधी वियूं। ब्रेंट क्रूड जी क़ीमत 96.34 डॉलर फी बैरल ताईं पहुची वई। WTI क्रूड जी क़ीमत 94.43 डॉलर फी बैरल ताईं पहुची वई। मर्बन क्रूड जी क़ीमत 90.88 डॉलर फी बैरल ताईं पहुची वई।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: सिंध का है ये मुन

0: दोनों जहां।
1: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, और मुझे कहते हैं आज जी रुखसार, और आपका मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में कॉल्स के थ्रू 03000113488 के ऊपर आप लोगों के लाइव कॉल्स को रिसीव किया जाएगा, सो दैट आप मुझे ज्वाइन कर पाएंगे, और ज्वाइन करने के बाद मुझसे बात कर पाएंगे। हमारा बैकग्राउंड क्यों खत्म हो गया यार? हमारा बैकग्राउंड नहीं खत्म होना चाहिए था। सो साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स भी मुझे रिसीव होते जा रहे हैं, सबको इंक्लूड करेंगे, और बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेजेस जो कि आप लोग मुझे करते जा रहे हैं, तो सुनेंगे एक अदद बैकग्राउंड, और इसी के साथ हम कमेंट्स को रीड करेंगे।

0: Okay, जी, गवर्नमेंट्स को एंटरटेन करते हैं इस मांग की शोगे गुड मॉर्निंग सर में आ गया. गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल. इसके अलावा जी इस मांग की शोगे गवर्नमेंट घूम करने पड़ेंगे. घर तो रही हूँ री. अब्दुल रजाक के देंगे मोहम्मद खान कुंबर हालीपोटो स्टॉप से सुन रहे हैं. क्या सरदर्द ने यही गाना गाया था? क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आया है ना, मुझे भी नहीं आया. मैं समझ रही थी कि शायद मुझे ही नहीं आ रहा है. आप लोग कहते होंगे कि पता नहीं कैसी आ रही है, समझ ही नहीं आता इसको कुछ. लेकिन वाकई समझ नहीं आ रहा था यार वो तो. सॉन्ग वॉज प्लेइंग फॉर 7 मिनट्स. इट एंड सम टाइम. हो गया ना खत्म, हो गया ना. खाना खान बक्कर से हमें सुन रही हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. गुड शो, वेलकम टू द शो. आपको भी वेलकम. आज का टंग ट्विस्टर दानिया ने धीरे धीरे देखी, नहीं सॉरी, दानिया ने धीरे धीरे दाल देखी में डाली. दानिया ने धीरे धीरे दाल देगची में डाली, ये कहेंगे 03000113488. और मिसेज अली कहती हैं कि कॉल पे नम नहीं, अच्छा नंबर नहीं लग रहा. अच्छा मुझे जब मैसेज रिसीव होता है ना, मैं उसको उसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन के साथ रीड कर रही होती हूँ. जैसे बहुत सारे लोग नंबर को नम लिखते हैं, नम नहीं लग रहा. नहीं को नहीं लिखते हैं, नहीं, नम नहीं लग रहा. ओके, 03000113488 ये हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है. इसके ऊपर कॉल करने के बाद आप लोग आ सकते हैं कॉल पे और टंग ट्विस्टर कह सकते हैं. तो फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल इस सेगमेंट के, हेलो हेलो. वालेकुम अस्सलाम सरदर्द. सरदर बात कर रही हो?
1: अदब बात कर रही.
0: कौन बात कर रही हो? सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो,
1: बता रही हूँ.
0: बता रही है तो बताए ना.
1: सरदर्द बात कर रही हूँ.
0: सरदर्द बात कर रही है. सरदर्द टंग ट्विस्टर बोलना है.
1: दानिया ने धीरे धीरे दाल जीते में डाल दी.
0: यस,
1: दानिया ने धीरे धीरे दाल जीते में डाली. दानिया ने धीरे धीरे दाल जीते में डाली. दानिया ने धीरे धीरे दाल जीते में डाली. दानिया ने धीरे धीरे दाल जीते में डाली. दानिया ने धीरे धीरे दाल जीते में डाली. दानिया ने धीरे धीरे दाल जीते में डाली. दानिया ने धीरे धीरे दाल जीते में डाली. दानिया ने धीरे धीरे दाल जीते में डाली.
0: अगेन स्टॉप, वेरी नाइस. और कुछ कहना है सरदर्द?
1: हाँ कुछ नहीं यार. इस दिन आप जब कॉल पहले आप रिसीव करे थे, फिर बाद में आपने रिसीव की, तो ये कॉल भी थी इसीलिए मैंने कॉमेंट आपसे कही थी. तो मैंने सुन ली मासी से बाइक.
0: अच्छा तो फिर क्या कहना चाहेंगी, जवाब देना चाहेंगी?
1: हाँ वैसे वो मेरे खाने से तेज नहीं है वैसे सुनने में. वो कॉमेंट आप रिसीव करे थे तो मैं कॉल पे थी इसीलिए मैंने सोचे.
0: चले ठीक है
1: यार, मासी से बाइक सॉरी आपको बुरा लगा गया.
0: नहीं बुरा तो उन्हें क्यों लगेगा, वो असल में ये कह रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आया.
1: नहीं उस दिन में जब उसको माँ के बाइक कहते ना कि ख्याल चले वही बताए.
0: चलिए जी, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू. और कुछ?
1: अल्लाह हाफिज़.
0: अल्लाह हाफिज़.

0: Okay, next caller. Hello. وعلیکم السلام. لگ گئی نا کال؟
1: شکر الحمدللہ. نمبر آف بتا رہا تھا.
0: نمبر آف بتا رہا تھا, چلے کوئی بات نہیں, اب تو نمبر آن ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ پروگرام سن رہی ہیں؟ Yes,
1: I love you so much.
0: अच्छा, क्या भूल गई थी? ओके, ठीक है. आज कह दिया ना आपने, बस मुझे पता है. अगर आप ना बोलते तो मुझे पता होता है. जी,
1: तो मैं आपको ये नहीं कहती ना आई लव यू, तो मेरा दिमाग घूम जाता है. लड़की ने कहा.
0: अच्छा, मुझे एक बात बताए, जीजू को बुरा तो नहीं लगता हाँ मुझे आई लव यू कहती है? जेलस होते हैं?
1: हाँ.
0: वो तो फिर उनका होना बनता है ना. वो कहते होंगे, मुझे तो कहती नहीं है, उसको बार बार कहती रहती
1: है.
0: हाँ जी,
1: कहती हूँ जलती रहो.
0: नहीं नहीं, बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए. वो उनका भी
1: जाने.
0: हाँ जी,
1: आपके लिए सब लोग बोलते जलस नहीं होते.
0: बस वो तो उनका होना बनता है ना, उनका तो होना जलस बनता है, तभी वो जलस होते हैं.
1: अरे मेरी जान, तुम आप मेरी जान है ना.
0: चले,
1: जान से थोड़ी बोलती हूँ.
0: चलें जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मोहब्बत. हाँ जी,
1: क्या कहा आपने?
0: मैंने कहा बड़ी आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी.
1: मेहरबानी कोई बात नहीं.
0: चले फिर, अपना बहुत सारा ख्याल रखे.
1: बस आपका ये जो खतना है ना, ये बस दिल में छू जाता है, दिल को बस ये चुरा लेते हैं आप,
0: इसीलिए तो हंसती हूँ.
1: आपको हंसाती हूँ.
0: चले फिर, इसी बात पे मैं अगला गाना प्ले कर रही हूँ, उसको सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा मेरा साथ. हाँ जी,
1: स्मार्ट शेयर बाइक क्यों नहीं आते अब गाना गाने?
0: गाना गाना है आपने?
1: स्मार्ट शेयर बाइक क्यों नहीं आते गाना गाने अब?
0: गाना गाने आते हैं ना, अभी तो गाना सुना के गए, उनका गाना प्ले भी किया है.
1: उन्होंने सुना था? अच्छा, मैंने लेट कॉल किया ना.
0: बस आप गौर से नहीं सुनती ना मेरा शो, बस कट्टी.
1: जाने में सुनती हूँ, वो जो ये गाने वाला सिस्टम होता है ना. वो थोड़ा
0: ओ, कॉल ड्रॉप हो गई मिसेस अली की, और ये अचानक क्या ही हो गया है. खैर कोई बात नहीं. 03000113488 हमारा लाइव कॉलिंग नंबर. गाना प्ले कर रही हूँ एक अदद, इसको सुनते हैं और आगे चलते हैं.

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब PHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघि ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देरि सां हलणु फालेज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-700।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
3: GAFM 88
2: नेटवर्क
4: सिंध की आवाज़।

माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: ओके लास्ट में लकी कॉलर चेक करते हैं जी कौन. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम
0: जी. सागर भाई कैसे ठीक ठाक.
1: पहचान लिया
0: है ना. पहचान लिया बस मैं पहचान लेती हूँ कभी कभार ऐसा कर लेती हूँ मैं. और चलिए ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है कि मैं रोज पहचान रही हूँ. अच्छा लास्ट लकी कॉलर है आज की अच्छी बात क्या है.
1: आज ये अच्छी बात कुछ हर किसी को पता तो है ये कि अच्छी बात क्या है. समझते तभी है फिर क्या है लोगों को समझाना. अच्छी बात ये है कि गर्मी को तो पानी बहुत पिलाया करो आवाम को.
0: पानी बहुत पिलाया करो.
1: हाँ आप आवाम को बोल देना आप तो नहीं पिलाएंगे आज से. ओ आर एस वगैरह जलसी वगैरह पानी प्याज से एक गिलास दिए तो दो गिलास पानी का पिए भाई. गर्मी
0: बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. जबरदस्त. और कुछ कहेंगे
1: टंकटर क्या है मैम.
0: टंकटर वाला सेगमेंट तो खत्म कर दिया हमने.
1: तो गाने का सेगमेंट भी खत्म कर दिया.
0: गाने का सेगमेंट भी खत्म कर दिया.
1: गई भैंस पानी में.
0: शाम को निकालेंगे इसको पानी से.
1: सात बजे.
0: हाँ जी 7 बजे.
1: अच्छा 7 बजे का मुझे पता नहीं था. यकीन करें कसम से मुझे पता नहीं था. तो दिन मैंने कॉल कर दी फोन चला है चल रहा था आपका प्रोग्राम.
0: चले जबरदस्त. हाँ जी 4 बजे वाला तब्दील कर दिया ना. खत्म नहीं किया तब्दील किया है 7 से 8 में.
1: अच्छा चेंज किया है.
0: हाँ जी बिल्कुल चेंज किया है. और कुछ कहेंगे.
1: और 11 बजे ये कॉल मिला रहा था. 11:30 बजे कॉल मिली नहीं लगी नहीं अभी ये लास्ट और लकी कॉल लगे ये भी शुक्र है.
0: चले बहुत अच्छा जी थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें अपना. ओके जी अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. गाना प्ले कर रही हूँ जी एक बहुत ज्यादा खूबसूरत सॉन्ग जो कि आजकल बड़ा फेमस है. और फाइनली इसी के साथ लेंगे आप लोगों से इजाजत. इंशाल्लाह मेरी आपसे चुटचैट होगी इस प्रोग्राम में कल एंड सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजे. इसके अलावा 7 से लेकर 8 बजे तक होगी आज शाम को तो सुनना मत भूलिएगा. 1 घंटा नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन 7 से 8 वाली और कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह. सो दिस इज मी आरजे रुखसार साइन आउट. टेक केयर गुड बाय अमानी खुदा अल्लाह हाफिज.

0: It's 1 PM. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: फौज जो चवणा है त ईरानी पेट्रोकेमिकल्स ते हमला कया विया। तहरान, तब्रेज ऐं इस्फहान में बि धमाकनि जा आवाज़ ॿुधा विया। ईरान, इराक ऐं इसराइल हवाई हदूं बंदि करे छॾियूं।

जंगबंदी की हाणोखिन भंजकड़न की सीधी जिम्मेवारी अमरीका से है। असा के अगवी उन नीयत से शक हो। इसराइल के जहराड़न कदम के अमरीका की पॉलिसी का अलग नथु करे सकजे। ईरान के पर रही तर्जुमान इस्माइल बकाई की तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्माइल बकाई चे तो 24 कलाक दौरान जे कुछ थो है उन सिफारतकारी ए गालों अमल दुख्य वो। लबनान से हमला रोकण जंगबंदी जो हिस्सो हो। जंगबंदी की भंजकड़ी थी तो सिफारतकारी भी मुतासर थी। पाकिस्तान की टियाखड़े में पैगामन की मटासटा दौरान सदाई वाजह कर तो लबनान में जंगबंदी जो हिस्सो है। जंग ए सिफारतकारी जो मैदान गडियल है। ईरानी मफाद के तहफुज लाए असा भी मैदान इस्तेमाल करासी। असा जंगबंदी से कारबंद रहासी। जंगबंदी जो भंजकड़ियों अमरीका ए इसराइल पारा कई पी वन।

जी इसराइल ते हमलनि सां तहरान ऐं वॉशिंगटन विच में इम्कानी तौर ते थींदड़ मुआहिदनि ते को असर न पवंदो। हिक ॿिए ते हमला थी चुका। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खे चवंदुसि त हाणे ईरान ते हमला बंदि करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो इंटरव्यू में इज़हार। ट्रंप चयो त अमरीका ऐं ईरान विच में मुआहिदो थियण जी ज़रूर सूरत में इसराइली वज़ीर आज़म खे मुआहिदो तस्लीम करणो पवंदो। ईरान सां मुआहिदो करण जो इख़्तियार इसराइली वज़ीर आज़म वटि न पर मूं वटि आहे। असां ईरान सां हिकु हतमी मुआहिदे जे वेझो आहियूं।

ईरान ऐं इसराइल जे हिक ॿिए हमलनि बाद आलमी मार्केट में तेल जी क़ीमतुनि में तेज़ी सां वाध जारी। ब्रेंट क्रूड जी क़ीमत 97.34 डॉलर फी बैरल ताईं पहुची वई। WTI क्रूड जी क़ीमत 94.50 डॉलर फी बैरल ताईं पहुची वई। मर्बन क्रूड जी क़ीमत 90.68 डॉलर फी बैरल ताईं पहुची वई।

कराची जे पीआईबी कॉलोनी गार्डन ऐं न्यू कराची में रेंजर्स ऐं एसयूपी जो भताखोर गिरोह ख़िलाफ़ गरियल ऑपरेशन, छह ॼणा गिरफ़्तार। रेंजर्स तर्जुमान मूजिब गुझे मालूमात जी बुनियाद ते कयल गरियल ऑपरेशन दौरान भता माफ़िया सां वाॻियल छहनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो। जवाबदारनि मां मोहम्मद ख़ान उर्फ़ मोहम्मद जान, अली मोहम्मद ऐं बिलाल लासी जो तालुक़ु जमील छांगा ग्रोह सां आहे। जवाबदार अॾावत हेठि इमारतुनि ऐं शादी हॉल्स तां भतो उगाड़े परॾेह में तरसियल जमील छांगा खे पहुचाईंदा हुआ। गिरफ़्तार कयल जवाबदार अब्दुल समी बदनाम डोहारी, बशीर उर्फ़ मामा जो पुटु आहे, जेको रोड हादसे में फौत थियो हो। बशीर उर्फ़ मामा जो तालुक़ु माफ़िया गिरोह जे सरबराह अहमद अली मक्सी जे ग्रुप सां हो। गिरफ़्तार कयल जवाबदार अहमद रज़ा उर्फ़ जो तालुक़ु समत काठियावाड़ी गिरोह ऐं ज़ैन अली जो तालुक़ु पप्पू गिरोह सां आहे।

ऐं हिंगोरजा में बदमनीअ ख़िलाफ़ ॻोठाण जो क़ौमी शाहराह ते धरणो। रोड जे ॿिन्ही पासनि खां गाॾियुनि जूं क़तारूं लॻी वियूं। सईद सोलंगी, ग़ुलाम हुसैन सोलंगी ऐं ॿियनि चयो त ॾींहं ॾिठे जो हथियारबंद फोरू सरेआम फुरू करे रहिया आहिनि। पुलिस कार्रवाई करण खां लवाई रही आहे। नोटिस वठण जो मुतालबो।

ऐसी मालूमात लेंगे कि क्या आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या नहीं। तो जल्दी जल्दी से जाएंगे और मालूमात करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ज्यादा वाली ऐसी बात है जो कि जानना आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखा जाए तो बहुत से लोगों को थोड़ी सी इन चीजों की नॉलेज कम होती है। यानी कि देखा जाए तो आप खूबसूरत तो बनना चाहते हैं लेकिन आप लोगों को समझ नहीं होती कि भाई खूबसूरत किस तरह से बना जाएगा और ये जो खूबसूरती आपको मिल रही है तो उसे मेंटेन कैसे रखा जाएगा। तो बहुत ज्यादा वाली बातें जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी, लेकिन कहते ना कहते नहीं जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल जी अपना तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स फॉर रीजन थिंग मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। जल्दी जल्दी से बताएं कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब साथ ही साथ अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंत के हालत है, कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीद है शदीद इनके बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी 3 बजे तक। जाने के 2 घंटे हम आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाले हैं इसी उम्मीद के साथ, इसी मोहब्बतों के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हाँ ना बिल्कुल जी। तो चलिए जी यहाँ पर जितनी भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे। ऐसे बहुत सारी आंटियां अम्मियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सो भी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए। आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुन लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्राली बोस आपके होंठों पर 440 उल्के समाए लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के समाए लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब और आगे से प्रोग्राम करते हैं हम एक बहुत ब्यूटीफुल सी नात के साथ, बहुत प्यारी सी हम नात सुनते हैं। उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि मजीद प्रोग्राम में क्या होने वाला है और क्या कुछ है जो कि आप लोगों के लिए प्रोग्राम में होने वाला है। तो बिल्कुल जी प्रोग्राम है व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल करते जा रहे हैं खूबसूरत होते जा रहे हैं, लगाते जाइए और खूबसूरतियां हासिल करते जाइए।

0: आबादी बहुत ही ज्यादा प्यारी सी यहाँ पर नाद आप इंजॉय करें और साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद है मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं और तरीकेकार क्या होने वाली प्रोग्राम में शामिल होने के वो मैं आपको बताऊंगी लेकिन साथ साथ जरा ये जो बात बताने वाली होती है कि भाई आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल यानी कि टॉपिक क्या पूछा जा रहा है तो उसकी जानिब आ जाते हैं तो आज के प्रोग्राम में अगर सवाल की बात की जाए तो मेरा आप लोगों से सवाल ये होने वाला है जरा मैंने ये सोचा कि भाई बहुत से लोगों का ये एक ख्वाब होता है कि हम फेमस हो जाएं हमारे बहुत ज्यादा वाले फॉलोअर्स हों और हम मतलब हम जहां भी जाएं तो हमें लोग जाने तो आज जो मैंने आप लोगों के लिए सवाल सोचा है ना वो बिल्कुल ये है कि आप मुझे बताइए कि आप फर्ज कर लें कि अगर आप एक दिन के लिए बहुत ज्यादा फेमस इंसान बन जाए सिर्फ एक दिन के लिए तो आप उस एक दिन में क्या करने वाले हैं बिल्कुल सही आज के प्रोग्राम का सवाल आप लोगों से मैंने पूछा है कि अगर आप फर्ज कर लें एक दिन के लिए आप बहुत ज्यादा फेमस इंसान बन जाते हैं तो आप उस एक दिन में क्या क्या करेंगे और मुझे बताएं जल्दी से और इसी के साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं जुड़ना चाहते हैं प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम जी आप ऐसा कीजिए अपना सेल फोन उठाइए मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए अपना नाम लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है और जी लाड़काना FM 88.8 आप सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है पेज पर आइए वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे तो पोस्ट को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर करते जाइए ताकि लोगों को पता चल सके भाईजान कि मार्केट में कितने अच्छे वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं तो बिल्कुल जी आप अवेलेबल खुद भी करा सकते हैं अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल तो आप बस डायल करते हैं 03-15-799-05-95 ये नंबर डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में आपके गोट में आपके सिटी में अवेलेबल होने चाहिए व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ओके तो आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से पूछ लिया है कि आप मुझे बता रहे हैं कि फर्ज करिए अगर आप एक दिन के लिए बहुत ज्यादा फेमस इंसान बन जाए तो आप क्या करने वाले हैं ठीक है जी मुझे जल्दी से बताएं मुझे जानना है और साथ साथ पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते चाहिए बिल्कुल जी आप लोगों की मुझे लाइक्स और शेयरिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा वाली चाहिए और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद जुड़ते जा रहे हैं प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वाला आपका शुक्रिया है और साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ना सिर्फ आपकी खूबसूरती का ख्याल रखने वाले प्रोडक्ट्स हैं बल्कि आपकी खूबसूरती को और ज्यादा जो है ना वो खूबसूरत भी बनाने वाले हैं अगर आप खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं खूबसूरती में चाहते हैं कि भाई जो है ना वो कभी भी ऐसा ना हो कि हम खूबसूरत हो जाएं जब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं वो खूबसूरती कहीं गायब हो जाती है तो आपके पास व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं इनका इस्तेमाल कीजिए आपको खूबसूरती मिलेगी और वो खूबसूरती मिलेगी जो कि आपके साथ हमेशा मौजूद रहेगी तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम और मजीद बहुत ज्यादा वाले प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को हम बताते रहेंगे लेकिन यहाँ पर आप जो हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं तो बिल्कुल सही आप लोगों के मैसेजेस हैं यहाँ पर और हमारे साथ SN मौजूद हैं वालेकुम अस्सलाम मुस्कान जानी आप कैसी हैं आप जाना अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे आबाद रखे अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां दे और जाना क्या चल रहा है आपकी लाइफ में मैं जाना मेरे खास सलाम आपको और आपकी अम्मी जान को और आपकी दीवानी SN हमारे साथ क्या बात है SN आप इतने दिनों के बाद प्रोग्राम में शामिल हुई हैं कहां गायब हो गई थी और बशीर लिगारी हमारे साथ हैं गोट मीर खान लिगारी वालेकुम अस्सलाम अदाजु मोहब्बत हुआ है और राशिद अवान हमारे साथ ही फ्रॉम मेहरापुर कहते सलाम सिस्टर सदरा मुस्कान में क्रीम इस्तेमाल अच्छा चलें ठीक है हाँ कहते मैं क्रीम तो इस्तेमाल नहीं करता हूँ लेकिन आप जो इतना बताती हैं तो अब मेरा दिल कर रहा है कि व्हाइट एज की लवली क्रीम इस्तेमाल करूंगा बिल्कुल जी ये जितने भी हमारे साथ लोग ऐसे ही ना जो कहते हैं ऐसा क्रीम ना ही होने दा ऐसा क्रीम मतलब करे हई कोने का तो उन्होंने सभी माण की चवनम तो व्हाइट एज जी का लवली क्रीम अथव न इं तुम सभी जलाए अव तो व्हाइट एज की लवली क्रीम हिकड़ी फेयरनेस क्रीम आए और फेयरनेस क्रीम की जरूरत मुझे ख्याल में हर कंखे पवंदी है सो तुम व्हाइट एज की लवली क्रीम लगा सको था जी मू अगर कोई भी प्रोडक्ट ना लगाइंदा तो व्हाइट एज लवली क्रीम तुम्हें लाया है सो तो लाजमी लगाए जो मुख्य बुधा जो तुम्हें रिजल्ट की मिलन पाया और आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम है ठीक कहते हैं आप जी मैं ठीक हूँ आप बताएं आप कैसे कटे सटे और कहते मुनाफ़त की हद है अपनों की कामयाबी से हसद और गैरों की गुलामी पर फख्र ये हमारे मुआशरे की वो तलख हकीकत है जो अंदर ही अंदर रिश्तों को खोखला कर देती हैं बिल्कुल जी तमाम सही था चो उनका अलावा वासु भाई हमारे साथ है कहते अदी सिडो असा भी अच्छी वयासी हवा में उडड़ी अदी सिडो सलाम हवा में उडड़ो पया ताने हवा हली थी वैसे बुधायो तो सही इतने तो ॾाढी जो गर्मी आए सफ़ा घणी गर्मी और हिदायतुल्ला क्या कहते याद अच्छा, यानी कि आपको मेरी याद आ गई और मैं यहाँ पर टपक गई। वालेकुम अस्सलाम, कहती हैं आप कैसी हैं? आज ये सॉन्ग चलाओ आसान से करे लाड़कानो। अच्छा, यू सच में गानो आए, चलो मैं सर्च किया थी, मुझे मिलियो तो हलायूं था, ठीक है। और मलिक जफर रत्ता हमारे साथ मौजूद है, आप हमारे साथ हैं जी। मोहम्मद बख्श पाकिस्तान रेलवे गेट से, ओके जी, कहते हैं। अच्छा, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, सो बहुत शुक्रिया भाई जान। और मुनस्सिब असीर हमारे साथ मौजूद हैं जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। किशोर भाई की सलाम अदा की, आई हो कैसा आई हो, खुश आयो? बिल्कुल मुंह जड़ा स्मार्ट, बिल्कुल जी तवा जड़ा स्मार्ट, शायद तवा का हम थोड़ा वध कहो जो। अच्छा, नजीर कोज भाइयों में सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, बहुत शुक्रिया आपका। इमरानी अब्बास हमारे साथ ही थे, आपका शो ग्रेट है और आपकी आवाज भी, बहुत शुक्रिया जी। और ये जी हमारे साथ मौजूद हैं उमर, उमर वालेकुम अस्सलाम, उमर आपका भी। और मोलाई मुजाहिद बोजदार हैं ठूफ चूसल से, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। सिडोर जी आप कैसी हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ और मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। जब से मैंने वाइटिश के प्रोडक्ट्स लगाए तब से तो कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई हूँ, अच्छी से मुराद मना गोरी। तो आप भी लगाइएगा ताकि आप भी खूबसूरत और गोरे गोरे हो जाएं। और जाकिर हुसैन कोरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, बिल्कुल जी सबके मैसेजेस सबके।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाने हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोजानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो GFM 90.8।

वापस आ चुके हैं दोबारा से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आपकी सदरा के साथ मौजूद है मुझे कौन सुन रहा है मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ मौजूद है ये मुझे पता होना चाहिए इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बताते चले कि जनाब प्रोग्राम में मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताइए कि अगर आप फर्ज कर लें एक दिन के लिए आप बहुत ज्यादा वाले फेमस बन जाएं बहुत ज्यादा वाले जो ना आपके पास फॉलोअर्स आ जाएं सिर्फ एक दिन के लिए तो आप उस एक दिन में क्या करेंगे यानी कि कुछ लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि भाई अगर मैं फेमस हो गया ना तो फिर मैं ये करूंगा मैं फेमस हो गई ना तो फिर मैं ये करूंगी आजकल आप जैसे इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं ना तो आप ये सोच रहे कि अगर मैं इनकी जगह होता या मैं इनके जैसे फेमस होता तो फिर मैंने ये करना था तो बिल्कुल आज आप मुझे जरा बताइए फर्ज के लिए अगर आप एक दिन के लिए फेमस हो जाएं तो आप क्या करेंगे हाँ जी

साईं वाज जो गानो हलायो थम और यहां पर हमारे साथ हैं जी जाकिर हुसैन कोरी कहते हैं सवालों जो जवाब दींदा सी गडोगड तवां जी क्रीम के मशहूर भी कंदा सी चले ये भी अच्छी बात है और हिदायतुल्लाह कहते हैं चापे कैंसर सिद्रा आपने एक दिन के लिए फेमस बनाया है वो भी दोपहर तो हो गई है नहीं वो कल का दिन समझ लिया आप तो उसके अलावा जो है ना किशोर भाई क्या कहते टॉपिक अदी एक दिन फेमस हुए तो खुशी मनाएंगे नाचेंगे गाएंगे सेल्फियां और वीडियोस बनाएंगे और दिन खत्म हो जाएगा पैसों हिकड़े डीह लाए मिले हाथ बैंक में रख रही हूँ जमीनू लिख रही हूँ गोवर का बात जो है ना हमारी पैसों पर आ जाती है अच्छा उनके अलावा कहते अदी हिकड़े डीह जो सीएम जो ठाई हाँ उन जो थोड़ो मतलब जो है ना उनके साइड से रखो जो पूछो वो बताओ अच्छा उनका अलावा एस खानी हमारे साथ हैं एस खानी वालेकुम अस्सलाम आरजे सिद्रा आपका शो भी नाई से है पहली बार कमेंट कर रहा हूँ और आप शो के नंबर तो बता दें बिल्कुल जी शो का नंबर है 03-15-799-0595 ये नंबर आप डायल कीजिएगा ठीक है और वीरू मल मेंगवार भाइयों में सुन रहे हैं मेरे खास ही आपका बहुत शुक्रिया अनवर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदी वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो एक बेहतरीन प्रोग्राम साबित हुआ है उन्हें जो क्रेडिट सदे FM जी टीम ऐं खास तौर ते अवां ॾे वञे पियो इनशाला ईअं ई ख़िदमतूं सर अंजाम ॾींदा रहंदा ऐं लिसनर्स जो दिलियूं खटींदा रहंदा आमीन आमीन जी बिल्कुलु तव्हांजो मुहबतूं रहियूं त बिल्कुलु ईअं ई थींदो रहंदो और कंहिं ते टॉपिक हिकु ॾींहुं फेमस माना राति ख़्वाबु ॾिठो सुबुह जो उथियासीं त कारी वारा कक बिल्कुल ईअं चई सघिजे थो ओके सो अगरि तव्हां सां ईअं सीन थी वञे त पोइ तव्हां छा करण वारा आहियो बिल्कुलु मां इहो तव्हां खां पुछां थी ऐं तव्हां खां ॼाणींदासीं ठीकु आहे ऐं हिते जेको आहे त गानो त ॿुधोसीं हाणे तव्हां ज़रा ॿुधंदा बाबा त वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो तव्हांजी ज़िंदगी में जेको आहे न एंट्री शो ज़रूरी आहे अक्सर ई थींदो आहे त असांजी ज़िंदगी में कुझु चीज़ुनि जी ज़रूरत हूंदी आहे कुझु माण्हुनि जी ज़रूरत हूंदी आहे पर कुझु चीज़ुनि जी बि ज़रूरत हूंदी आहे अगरि ॾिठो वञे त वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स उहे प्रोडक्ट्स साबित थिया आहिनि जेके तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाइनि था ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती खे हमेशह जे लाइ जेको आहे न हू प्रोटेक्ट बि कनि था लॉक बि करे छॾनि था ईअं न त सिर्फ़ु तव्हां प्रोडक्ट लॻायो था त तव्हांखे ख़ूबसूरती मिले थी अगरि तव्हां छॾे ॾियो था त पोइ तव्हांजी ख़ूबसूरती बि तव्हां खां हली वञे थी बिल्कुलु ईअं कोन्हे को सो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हांजे लाइ हर तरह जा प्रोडक्ट मौजूदु आहिनि अगरि तव्हां कोई बि प्रोडक्ट इस्तेमालु करणु चाहियो था त वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हांखे हर तरह जो प्रोडक्ट मिली रहियो आहे जीअं पहिरियां अदी असांखे चयो त मां ब्यूटी क्रीम न लॻाईंदो आहियां पर वाइट एज जी लवली क्रीम लॻाईंदमि बिल्कुलु ईअं ई अगरि तव्हां ब्यूटी क्रीम नथा लॻायो वैसे त खोड़ माण्हू नाइट क्रीम इस्तेमालु कंदा आहिनि ब्यूटी क्रीम तव्हां लॻाईंदा आहियो त तव्हां वाइट एश ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कंदा अगरि तव्हां एक्नी यानी कि दाणनि खां परेशान आहियो त तव्हांजे लाइ वाइट एश जेको आहे न डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूदु आहे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब अगरि तव्हां नालो वठी करे परचेज कयो था त तव्हांखे आराम सां मिली वेंदो ऐं तव्हांजे दाणनि खे बिल्कुलु ख़तमु करे छॾींदो आहे सिर्फ़ु दाणा न बल्कि तव्हांजे चहिरे जा निशान आहिनि या फिर तव्हांजे चहिरे ते कोई धक जो निशान आहे कोई सड़न जो निशान आहे जेको तव्हां काफ़ी टाइम खां रिमूव करणु चाहियो था पर रिमूव न पियो त डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तव्हांजे लाइ मौजूदु आहे तव्हां वठी सघो था इस्तेमालु करे सघो था उन खां अलावा जेको आहे त वाइट एज जो साबुण तव्हां वटि मौजूदु आहे वाइट एज जो फेस वॉश तव्हां वटि मौजूदु आहे जेको वाइटमिन सी सां तयारु थियल आहे सो ही जेतिरा बि वाइट एज जा प्रोडक्ट आहिनि ही सभु जेके न हू नेचुरल अज़ा सां तयारु थियल आहिनि ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती जे लाइ बिल्कुलु सफ़ा परफेक्ट आहिनि तव्हां मर्द आहियो मायूं आहियो तव्हां सभु लॻाए सघो था ऐं सभु खां मज़ेदार ॻाल्हि जेका मूंखे लॻे थी त वाइट एज वारा जेके प्रोडक्ट आहिनि ही सभु जेके न नेचुरल अज़ा सां तयारु थियल आहिनि यानी कि अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे का त तव्हां इहो चओ त बाबा केमिकल हूंदो या असां लॻाए सघूं था नथा लॻाए सघूं बिल्कुलु तव्हां लॻाए सघो था छो त वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट तव्हांजी स्किन खे जेको आहे न फ्रेश बणाईंदा फेयर बणाईंदा तव्हांजी स्किन तां जेके मसला आहिनि उहे सभु ख़तमु करे छॾींदा ऐं तव्हांजी स्किन सफ़ा ईअं चमकंदी वधंदी मर्द हज़रात आहियो मायूं आहियो ख़वातीन जेके बि ॿुधनि पियूं हाउस वाइफ आहियो या फिर जेके टीनेजर छोकिरियूं असां सां गॾु मौजूदु आहिनि टीनेजर जेके छोकिरा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि त तव्हां एक्नी जी वजह सां अगरि परेशान आहियो त डॉक्टर पिंपल जो एंटी एक्नी ट्यूब तव्हां लॻाए सघो था बाक़ी अगरि रही ॻाल्हि वाइट एश लवली क्रीम जी त ही त तव्हांखे ख़बर आहे मुंहिंजो फेवरेट प्रोडक्ट आहे असां पाण बि इस्तेमालु कंदा आहियूं जेका शइ असांखे पाण खे वणंदी आहे त बाबा उहो मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे मां तव्हांखे बि ॿुधायां तव्हां सां बि शेयर कयां जीअं जेके लिसनर्स असांखे ॿुधनि था उन्हनि खे बि थोरो फ़ाइदो पहुचे मार्केट में जॾहिं तव्हां वेंदा आहियो त मार्केट भरियल पियो आहे बाबा प्रोडक्ट्स सां ऐं जॾहिं तव्हांखे उहे सभु प्रोडक्ट तव्हां ॾिसंदा त तव्हां थोरो कंफ्यूज़ थींदा त हाणे असांखे कहिड़ो प्रोडक्ट वठणु घुरिजे कहिड़ो न वठणु घुरिजे त उन्हनि सभिनी सूरतुनि में जेको आहे न मां तव्हांखे थोरो इहो ॿुधाईंदी आहियां त तव्हांखे ख़बर हुजणु घुरिजे त तव्हां जेको प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो पिया या जेको वठो पिया त उहो कहिड़ो आहे उनजो छा फ़ाइदो आहे ऐं हू तव्हांजी स्किन ते कीअं जेको आहे वर्क करण वारो आहे सो अगरि तव्हां वाइट एश लवली क्रीम वठो पिया त वाइट एश लवली क्रीम उन्हनि सभिनी माण्हुनि जे लाइ आहे जेके मेकअप यूज़ नथा करे सघनि जेके कोई डेली बेसिस ते कोई कमु कंदा आहिनि कोई तव्हां जॉब कयो था
तव्हां स्कूल गर्ल आहियो कोई बि हिन में न वाइटेस्ट लवली क्रीम में एज लिमिट बि कोन्हे का त तव्हां कहिड़ी उमिरि में लॻाए सघो था हिन में हर जेको आहे न हर कोई इस्तेमालु करे सघो था वाइटेस्ट लवली क्रीम तव्हां ॿार आहियो तव्हां जवान आहियो बूढ़ा आहियो मर्द मायूं सभी लॻाए सघनि था सो वाइट एज लवली क्रीम जेका आहे रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन्स जो फार्मूलो आहे जंहिंजे अंदरि 30 वाइटमिन्स जा कैप्सूल एड कया विया आहिनि जंहिंमें वाइटमिन B3 आहे वाइटमिन ई आहे वाइटमिन सी आहे वाइटमिन डी आहे ऐं उनखां अलावा सनस्क्रीन बि अथसि सो अगरि तव्हां चाहियो था त बाबा तव्हांजे लाइ सनस्क्रीन अगरि तव्हां मार्केट में अलॻि सां इस्तेमालु कंदा आहियो वठण वेंदा आहियो त सनस्क्रीन सही वारी तव्हांजे स्किन ते सूट करण वारी सनस्क्रीन मूंखे नथो लॻे त अॼु ॾींहं ताईं कंहिंखे शायदि मिली हूंदी जेतिरा जेको आहे न जतन कबा आहिनि त असांखे सही तरह जो प्रोडक्ट मिले जेको तव्हांजे स्किन ते सूट बि करे त सनस्क्रीन जेको हिकु अहिड़ो प्रोडक्ट आहे जेको सफ़ा घणो कंफ्यूजिंग लॻंदो आहे मूंखे त अगरि तव्हां चाहियो था त इन कंफ्यूजन में तव्हां न पओ ऐं तव्हां वटि कोई अहिड़ो प्रोडक्ट मौजूदु हुजे जेको तव्हांजे स्किन जेका न उहा प्रोडक्ट बि करे ऐं तव्हांजी ज़िंदगी बि आसान बणाए त तव्हां वाइट एज लवली क्रीम जे तरफ़ अची सघो था ऐं वाइट एज लवली क्रीम जेका लाइट वेटेड फार्मूलो आहे ऐं तव्हांजी स्किन जे लाइ सफ़ा बहितरीन साबित थियण वारी आहे सो वाइट एज लवली क्रीम तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो उन सां गॾोगॾु जेको आहे न इस्तेमालु करण जा तरीक़ेकार बिल्कुलु ई आहिनि त वाइट एज लवली क्रीम खे तव्हां ॾींहं जो लॻाए सघो था राति जो कहिड़े बि टाइम लॻायो मुंहुं धोई करे लॻाइजो सही आहे ऐं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको आहे हीउ तव्हां राति जे टाइम इस्तेमालु कंदा सुम्हण खां पहिरियां ठीकु आहे पंहिंजो फेस वॉश लाज़मी कंदा कयो कोई बि प्रोडक्ट लॻायो था त ऐं हथनि खे बि चङे तरीक़े सां वॉश रखंदा कयो जीअं तव्हांजो जेको प्रोडक्ट आहे न उहो क्लीन तरीक़े सां तव्हांजे फेस ते लॻे ऐं जॾहिं वाइट एज ब्यूटी क्रीम तव्हां लॻायो था त उहा बि तव्हांखे राति जे टाइम लॻाइणी आहे ऐं बिल्कुलु तव्हां पंहिंजो फेस वॉश करे पोइ ई लॻाए सघो था सो वाइट एज ब्यूटी सो बि तव्हांजे लाइ मौजूदु आहे वाइट एज जो फेस वॉश भी तव्हांजे लाइ न मौजूदु आहे अगरि तव्हां चाहियो था त तव्हां फेस वॉश लॻाए सघो था तव्हां साबुण लॻाए सघो था जंहिंमें तव्हां ईज़ी फील कयो जेको तव्हांजे लाइ आसान हुजे तव्हां उहा शइ इस्तेमालु कयो छो त वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स तव्हांजे लाइ हर तरह जो प्रोडक्ट खणी आयो आहे सो इहो ई फ़ाइदो आहे इहा ई हिनजी कामयाबी आहे उन खां अलावा तव्हां कोई बि प्रोडक्ट हिन जो परचेस करे सघो था तव्हांखे आराम सां मिली वेंदो मुनासिब क़ीमतुनि में मिली वेंदो तव्हांजी हर स्किन टोन जे लाइ आहे ऐं नथो मिले त पोइ तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595 ही नंबर जल्दी जल्दी डायल कयो जी तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते बि जल्दी जल्दी ही प्रोडक्ट अवेलेबल थी वञनि ऐं तव्हां बि जल्दी जल्दी इस्तेमालु कयो

जी मिठो ॻाल्हाए महफ़िल फुरी वई आहे, तव्हां मूंखे ॿुधायो पिया त अगरि तव्हां फ़र्ज़ कयो हिकिड़े ॾींहं जे लाइ तव्हां फेमस थी वञो था, सफ़ा घणा फेमस थी वञो था, हर कोई तव्हांखे सुञाणे थो, वाह वाह जारी वञो, बसि माण्हू तव्हांखां सेल्फियूं घुरनि, अगरि अहिड़ा तव्हां फेमस थी वञो हिकु ॾींहं जे लाइ त पोइ तव्हां हिकु ॾींहं में छा छा कंदा, कहिड़ी कहिड़ी ख़्वाहिश आहे जेका तव्हां पूरी करणु चाहियो था सिर्फ़ु हिकु ॾींहं जे लाइ? उन खां अलावा तव्हां असांजे प्रोग्राम जो हिसो थियो पिया, बिल्कुलु जी तव्हांजो मुहबतूं आहिनि, अचूं था तव्हांजे मैसेजेस जी तरफ़, ऐं जेके फेसबुक ते माण्हू असांखे ॿुधनि पिया, बाबा पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा कयो, सही आहे?

अच्छा अनवर भाई कहते हैं अदी कम से कम मेरे बेटे की बर्थडे त विश कयो आ प्रोग्राम में केड़े प्रोग्राम में अदु थस त बिल्कुल जी विश कना सी तवा जे पुटर जी बर्थडे उन खा अलावा ता जो मोहब्बत प्रोग्राम बुधो पया और वास भाई कहते हैं अदी सिडो जवाब असा जो मुआशरो एड़ो आए सजो डी मानन सा सेल्फियों कढण में पूरो थी वेंदो हकीकत सिद्धार्थला कहते सिद्रा वो पूछना ये था कि अगर उम्मीदों पर पानी फिर जाए तो उन पर वाइपर लगाया जा सकता है बिल्कुल जी तसली से लगाइए कोई मसले की बात ही नहीं है और किशोर भाई कहते बिल्कुल अदी असा सोचो आहे पर एक दिन के लिए ना पूरी जिंदगी ले चल यो सही है।

वाह वाह यो कमाल था व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो तमाम लगाया था कौन बुझायो थे मोहम्मद सुमान के थे वेलकम टू शो व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो तमाम के बिचोंदा भली करी आया प्यारा दा अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं कि वैसे सिद्रा में फेमस होने वाला था कि मेरे अकाउंट पर रिश्तेदारों की नजर पड़ गई अब रिश्तेदारों की नजर का तो तुम्हें पता ही जी जी इसीलिए कहते हैं रिश्तेदारों से जरा छुपा के रखा करिए अपनी खुशियों को और लुबी हमारे साथ मौजूद है क्या बात है लुबी गुड आफ्टरनून सिडो जानी मैं भी आपके साथ साथ हूँ अर्जी भुट्टो से आपका शो सुन रही हूँ अर्जी भुट्टो वारी लड़कियों को सलाम जेके शो बुधन थियो अर्जी भुट्टो जी सभी सोने छोकरन के सलाम आ बाबा आई तमा के प्रोग्राम में वेलकम चौ था आई तमा बुधायो था अर्जी भुट्टो में व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलन था कोने ने सभी सोने छोकरन के चौ तो बाबा व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाए पोजी मिठू गाल है महफिल फुरे वंजन अच्छा मोलाई मुजाहिद बोल जाटूप चूसल से क्या कहते हैं एक मिनट से हाँ जी टॉपिक अगर मैं फेमस हो गया तो आने वाली इलेक्शन में हिस्सा लूंगा वो तो एक दिन के लिए फेमस होंगी ना आप तो ये तो पता नहीं कब होगा तो एक दिन की बात करें एक कड़ियाँ जो गाल आयो एक कड़ियाँ जो अच्छा फेरोज अली बिरोही हमारे साथ मौजूद है हेलो अच्छा आदल कहते हैं कि जवाब जेकर असा एक डी में मशहूर थी वन्यो ते छा कंदासी पेरियो अल्लाह जो शुक्र कंदासी इज्जत दींदड़ फकत वो ही आए बिल्कुल जी ऐं पांजे वालदेन के अच्छा वालदेन सा गड उन के सेलिब्रेट कंदा सही सही ट्रियों चौथा मशहूर थियण जो मतलब आहे आवाज मिलण गरीबन यतीमन ए महबूब मजबूरन जी अच्छा मां जो महबूब रिकाडा अच मजबूरन जी मदद कंदासी नाले के कम में लाईंदासी ओके ओके आई जमीन ते पेर रखी हलंदासी गुरूर न कंदासी छो त मशहूरी बडी हची आहे पर इज्जत सदा जी आहे बिल्कुल तमा भली या गाल कास्ट में त जका मशहूरियत आ ना वो सिर्फ बिंडी हची हुंदी आ पर उरूज के जवाल आहे सो बिल्कुल त वाकी जमीन ते घुमण जा आदि थी वयो आजजी जेका है ना हिकड़ी वडी गाल आए मुखे लगदो आजजी भी के के इंसान जे अंदर हुंदी आहे सो अगर तमा आजज आए हो अगर तहा के फकीर सा मिलो था तो फकीर के इयो महसूस न करायो तो तमा उन खा मथे आयो और अगर तहा के बादशाह सा मिलो था तो उन के इयो महसूस न करायो तो हु तमा खा मथे आए के इंसान में बस अगर ये बगालियों अची वई ना इन चीजों जी समझ अची वई ना तो हु कामयाब आए उन के अलावा अगर तहा व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पया व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट समाज एरिया में मिलन डाढो जरूरी आ है अगर नथा मिलन तो पोई तमा डायल कयो पया 03157990595 अच्छा अच्छा था चो लगी तो शेयरिंग वारा सब नाराज आए लगे ये तो वाकई शेयरिंग वारा मानू काथे आयो बाबा सिर्फ चार शेयर कया था सो या गलत गाल और मोलाई मुजाहिद बोजार के थे सिद्रो जी लाहूती साजन चांडियो भी आपका शो सुन रहे हैं लाहूती भा तुम मोहब्बत प्रोग्राम बुध पया

अच्छा यासीन गुडाड़ो भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सकरंट से तवां असांखे ज्वाइन कयो आहे, कहते हैं अल्लाह जो शुक्र आहे तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो। आवाज़ अंदाज माशाल्लाह मौला सलामत रखे, अव्हां खे सदाई खिलंदा रहो ईअं ही। थैंक यू सो मच प्यारा भाउ, तव्हांजो मोहबतूं आहिनि। और डेडिकेट, अच्छा तव्हां गानो लिखियो आहे, ठीकु आहे, मां कोशिशि कंदी तव्हांजो गानो हलाईंदासीं। इमरान अली बिरोही कहते हैं सिस्टर आर जे सिद्रा आप अच्छा क्या बात है, कहते हैं आप वो शख्सियत हैं जिसके शो में शामिल होना हम अपने लिए बड़ी नेमत समझते हैं। ना करें भाई, ये तो मेरी खुश नसीबी है कि आप जैसे लिसनर्स मेरे भाई प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, वाइट एज ब्यूटी क्रीम गुड है, सॉन्ग सुनाए मास्टर मंजूर का कुछ अल्फाज। चलें ठीक है, अल्फाज लिखिया तव्हां, मां बिल्कुलु तव्हांजी पसंदि जो गानो हलाईंदसि। साइम अमीर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माय बेस्ट आर्टिस्ट सिद्रा, शो मस्त है, मेनू सोप बहुत पसंद है और लवली क्रीम भी, तो वो ले जाऊं आपके सिटी से? बिल्कुल जी, मेरे सिटी से आकर ले जाएं, रेशम गली से आपको मिलने वाली है, तो आप आए मेरे सिटी से लें या फिर आप सखर से लें या फिर शिकारपुर से लें, आपकी मर्जी है, बस लीजिएगा जरूर ताकि आप लोगों की खूबसूरती जरा महफूज रहे और आप लोग जान सके कि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट का जलवाई अपना है। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जा रहे हैं, खूबसूरतियां हासिल करते जा रहे हैं, अपने एरिया में अवेलेबल कराते जा रहे हैं। टाइम हो जाता है जरा, हम न्यूज ब्रेक और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाने वाले हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाते रहिए, खूबसूरत होते रहिए।

0: कहाँ हो यार, मैं कब से तैयार बैठी हुई हूँ, तुम हमेशा लेट कर देते हो यार।
1: मैं नहीं आ सकता जन्नत।
0: क्यों?
1: मैं अभी शादी नहीं करना चाहता।
0: व्हाट? तुम्हीं ने तो कहा था।
1: झूठ कहा था।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: इदा कयो इन नंबर ते रातो करण खां पोइ तव्हां जे एरिया में बि अवेलेबल थी वेंदा। सो ही फर्स्ट कॉल आहे, ॾिसूं था केरस सां गॾु मौजूदु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। केरस सां गॾु मौजूदु आहे? ओके, भाउ छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो? आवाज़ कटिजी थो दादा तव्हांजो। हा, नेटवर्क जो शायदि काफ़ी सारो मसलो आहे ऐं नेटवर्क जी वजह सां ही शायदि तव्हांजो कॉल सही प्रॉपर तरीक़े सां असां वटि कोन पहुचनि पियूं। सो तव्हां कोशिशि कयो त अगरि तव्हां कॉल कयो था त कहिड़ी जॻह ते वञी ॿी कॉल कयो जिते तव्हांजो आवाज़ सही तरीक़े सां असां वटि पहुचे, ठीकु आहे? सो नेक्स्ट कॉल आहे, ॾिसूं था कहिड़े रस्ते सां गॾु मौजूदु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या
0: हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कहिड़े रस्ते सां गॾु मौजूदु आहे?
1: अब्दुल समी जूने जो अलीवान खां।
0: ओके, अब्दुल समी जूने जो, तव्हां ठीकु आहियो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, दुआयूं ॿिया ख़ैर ठीकु आहे।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम ॿुधो पिया भाउ असांजो?
1: जी जी, ॿुधूं पिया बाबा।
0: अच्छा, नालो अचे थो प्रोग्राम जो?
1: नालो वाइटेस।
0: ओके, ज़बरदस्त। प्रोडक्ट इस्तेमालु करे ॾिठा आहिनि?
1: कोन कया न।
0: चलो, अञा ताईं कोन कया आहिनि, को इरादो आहे त हा बाबा कंदासीं ज़रूर। चलो चलो, वाइट एसी लवली क्रीम तव्हां हणी ॾिसजो, ही तव्हांजे लाइ तयार कई आहे असां स्पेशली। अच्छा, मूंखे ॿुधायो था, टॉपिक ते ॻाल्हाईंदा, टॉपिक ॿुधो अथव अॼु प्रोग्राम जो?
1: हा जी, टॉपिक कहिड़ी आहे?
0: टॉपिक आहे त अगरि तव्हां हिकिड़े ॾींहं जे लाइ मशहूर थी वञो त पोइ हुन ॾींहं में तव्हां छा कंदा? चलो ज़बरदस्त, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा?
1: अब्दुल गनी जूने जो साहब।
0: जी जी।
1: अदील अबड़ो साहब।
0: जी जी।
1: ऐं ॿिया जेके सिंधु वासी दोस्त ॿुधनि था, सभिनी खे अस्सलाम।
0: ओके जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच प्यारा भाउ, तव्हांजो मोहबतूं प्रोग्राम ॿुधो पिया। ऐं हुन खां अलावा वरी चाह सां मोहबतनि सां प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो। नेक्स्ट कॉल असां वटि आहे, ॾिसूं था नेक्स्ट कॉलर कहिड़े रस्ते सां मौजूदु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम। अलहमदुल्ला, ठीक है। रस्ते से गड मौजूद आयो? अच्छा, वकार लाड़काने खां, मुखे बुधायो प्रोग्राम बुधो पिया असांजो? प्रोग्राम बुधो पिया असांजो?
1: प्रोग्राम ताजो बुधो हुंदा?
0: अच्छा, इस्तेमाल कयो पिया प्रोडक्ट जेकी बुधाया पई? चले ज़बरदस्त, टॉपिक ते छा चवंदा? जी जी जी जी, बिल्कुल।
1: मां
0: ली ईअं न कयो बाबा, अलाह साईं ॾोह ॾींदव। मज़ाक बि न कयो बाबा, अहिड़ी अलाह साईं खां डिॼंदा कयो। ओके, ज़बरदस्त। ओके, तव्हांखे मतिलब ख़बर आहे त मुंहिंजो इहो फेवरेट गानो आहे, हलो तव्हांजे लाइ लाज़मी हलाईंदासीं। मूंखे लास्ट में कोई यादि रहिजो त इहो वारो सॉन्ग असांखे हलाइणो आहे। सो बिल्कुल, तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया वाइट एज एंड टी स्किन ब्यूटी शो, जेको तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे। ही वारी कॉल वठूं था, ॾिसूं था केरु कॉलर सां गॾु मौजूदु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: وعلیکم السلام ابھی گلوری کا خالق لاشاری گلا
0: اوکے خالق بھا چالا خوش آیو
2: سلام تو مجھے نظر ہے تو بڑا کر رہا ہے
0: نا الحمدللہ مزے میں ہے پروگرام بدو پیا پیارا بھا یہ
2: ابھی ہمارے پروگرام کا دل سے بتا رہے
0: ہوں اللہ نالو چاہے پروگرام جو
2: ابھی وائٹ ایس بیوٹی کریم ہے بیوٹی کریم ہے ڈی اسکن ہے سب کا کی یاد ہے
0: واہ واہ واہ واہ صدقو ونا میں استعمال کیو پیا
2: جی ہاں تو بالکل جی پروگرام موجود ہے تا وٹھے استعمال کرے گا
0: زبردست زبردست ٹاپک دی چھا چمدا प्रमोशन बि पाण ई कंदा?
2: चैलेंज
0: ज़बरदस्त, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा?
2: अभी कुर्बान ले खास के लिए अभी दरबार है अभी सोलगिया यार मोहन सोलगिया
0: जी ओके थैंक यू सो मच प्रोग्राम में तमाम कॉल की प्यारा भात वहां से गाला इलाही करी इलाही जको ने सुठो लगो आई बिल्कुल कॉल अगर स्मूथली अचन पयूं तो मजो अचे पयो हते गानो हलायो हकड़ो तो मां सोचा पई त ही वारो गानो भी बुदंदा सी फरमाइश हुई ए दिसौ था तमा जा कुछ कमेंट्स पड़ी बैठंदा सी
3: 70 घुमण हल्लो पिक्चर सिनेमा में दिसी कटी बंदर घुमण हल्लो
0: न्यू कॉल्स इन तो हुए वरी पो ब्रेक हां पो मोटी सो तो वरी पो वठूं था ठीक है।

अच्छा आदिल तव्हांजो गानो हलायम जो कोन ॿुधव छा हेॾो वी आई पी गानो हुयो अच्छा शिराज अली हमारे साथ साथ है शिराज आपको वेलकम करते हैं और सऊदी अरबिया से आप हमारे शो सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम एम ए अंसारी हमारे साथ है एम ए अंसारी फ्रॉम नवाबशाह कहते आई एम लिसनिंग योर शो अरे काफी टाइम से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और कहते हैं थैंक यू जी थैंक यू और कहते टॉपिक पर कहूंगा कि सुबह उठ के फेस वॉश करके बाहर निकलूंगा और हीरो की तरह स्टाइल मार के उन रिश्तेदारों को जलाऊंगा जो एक दिन के बाद सारी उम्र खून जलाएंगे चले ये भी सही बात है और ये गाना आप इंजॉय करिए आपके नाम सखावत अली राजपर हमारी साथी वालेकुम अस्सलाम छाला तो आज खुश आयो

ओके जी, बहुत ही प्यारा गाना आप इंजॉय करियो और साथ साथ किशोर भके थे अदी अज मुए को गानो बुधो मुखे इय लगो ही गानो तवाजे शो में हर मानो के गालाण ते मजबूर कदो गानो आहे चले मा ही गानो हलाण जी कोशिश या दे दिसू था ते न ते वाकई किरकिर गालाए तो गाए भी तो या न और वासु भाई तवा के प्रोग्राम आने पे बहुत शुक्रिया और तवा से पोस्ट के लाइक शेयर के नालो न संगडो कर तवा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया कोन मुखे यो भी बुधायो पया आई तवा जे एरिया में मिले थी कोने तामु के इहो भी बुधायो पया।

अच्छा आदिल, जो पहला लिंक था ना मेरे प्रोग्राम का, उसके बाद जो दूसरा लिंक आया ना, उसके स्टार्टिंग में गाना लगाया था आपका, सुनिएगा जरा, फेसबुक पर तो मौजूद होगा ना। पप्पा का मोकल वठी अच्छो जी, तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करे सघो, ठीक आहे, ऐं तव्हां घुमो फिरो बाबा, ऐं मार्केट थोरो विज़िट कयो, हुननि खां पुछो दुकान वारनि खां त किथे किथे मिले थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जीअं तव्हां वठी सघो ऐं जीअं तव्हां इस्तेमालु करे सघो ऐं जीअं तव्हां सुहिणा थी सघो, समुझो था। ऐं डायल कयो 03-15-799-0595। हाणे टाइम थियो आहे बाबा वठूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, हुन खां पोइ वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾे अचूं था, तव्हां कॾहिं न वञो, हिते वेठा हुजो, मां उहो वञी उहो मोटां थी, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज beauty products and D skin beauty products.

0: FM 88
1: सिंध की आवाज। ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे और बेजानपन, अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जिल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ। खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: तंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गरमाइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी बादी बवासीर, इन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे ताई, बरोज जुम्मो 12 वगे ताई। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधिक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: इस फोन के कैमरे का तो रिजल्ट कितना अच्छा है, ये तो देखो।
3: एक और नया सूट, ये किस सहेली ने दिए आप?
4: Excuse me, मेरी तरफ से गिफ्ट।

0: रिश्ता भरोसे का
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 8:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

जनाब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावर से। बिल्कुल जनाब, सो बात हो यहाँ पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को मैं इस पूरे प्रोग्राम में बताती हूँ और वो इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ में होनी चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो उसके क्या फायदे आप लोगों को मिलने वाले हैं। अक्सर तौर पर जब लोग इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी आप अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना चाहें, ब्यूटी को बढ़ाना चाहें, खूबसूरती को निखारना चाहें, तो आपके पास इन चीज़ों की जो है ना वो जो ना लिस्ट होनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑल स्किन टाइप होना चाहिए। दूसरी बात कि आप जो है ना वो मर्द हजरात हो या खवातीन दोनों इस्तेमाल कर सके। और तीसरी बात जो है वो ये कि जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें वो नेचुरल अज्जा से तैयारशुदा होना चाहिए। जिन प्रोडक्ट के अंदर भर भर के केमिकल डाले जाते हैं ना वो प्रोडक्ट यकीन जाने आपकी खूबसूरती में जो ना वो निखार तो जल्दी लाते लेकिन उसके जो रिजल्ट आप लोगों को मिलते हैं ना वो तो ठीक ठाक होते लेकिन बाद में जो साइड इफेक्ट्स आपके चेहरे पर आ जाते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो हमेशा आप इन चीजों से अवॉइड करें। आप लोगों को चाहिए कि आप इस तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो कि लाइट वेटेड हो और आप लोगों की खूबसूरती के लिए ऐसा हो कि जब आप इस्तेमाल करते रहें, आप इस्तेमाल करना छोड़ दें तो आप लोगों को जो खूबसूरती मिले वो हमेशा आपके साथ मौजूद हो। तो बिल्कुल आप लोगों के पास व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद है, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद है। व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हो तो जनाब ये ऑल स्किन टाइप के लिए हैं, नेचुरल अज़ा से तैयार शुदा है। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम की अगर बात की जाए तो उसके अंदर एवोकाडो मिल्क और एलोवेरा मौजूद है। ये तीनों चीजें मिलकर जनाब व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है। उसके बाद आपके पास व्हाइट एज का ब्यूटी सोप भी मौजूद है, व्हाइट एज का फेस वॉश भी मौजूद है एंड व्हाइट एज लवली क्रीम मौजूद है। व्हाइट एज लवली क्रीम तो मैं सोचती हूँ कि इसे तो हर एक इंसान को लगाना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है। तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो कि भाई ऑल स्किन टाइप के लिए है, एज लिमिट भी कोई नहीं है कि आपकी उम्र अगर छोटी है तो नहीं लगा सकते, बिल्कुल ही लगा सकते, बच्चे बूढ़े जवान सभी लगाएंगे। और व्हाइट एज लवली क्रीम के अंदर जो है ना वाइटामिन से तैयार शुदा होने वाला ये प्रोडक्ट, इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है, तो बहुत ही शानदार क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है, आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। और उसके अलावा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब भी अवेलेबल है। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब से मुराद ये कि ये वो लोग इस्तेमाल करेंगे, खास करके वो टीनेजर्स लड़कियां लड़के जिनके चेहरे पर दाने बहुत ज्यादा आते हैं। और मैंने कई मरतबा ये चीज नोटिस करी है कि अगर आप की उम्र बढ़ जाती है, अगर आपके चेहरे पर दाने एक मरतबा आ जाते हैं तो फिर उम्र जितनी भी बढ़ जाए आप लोगों को ये नहीं आप सबर मत किया करें ऐसे कि भाई हमारी उम्र बढ़ेगी तो ये दाने खत्म हो जाएंगे, निशानात खत्म हो जाएंगे। आप जो है ना वो वक्त के साथ साथ अपनी इन चीजों का इलाज ढूंढना शुरू करें। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के चेहरे पर एक्नी खत्म हो जाते हैं, आपके चेहरे पर रिंकल खत्म हो जाते हैं, आपके चेहरे के निशानात खत्म हो जाते हैं, आपके चेहरे पर चोट का निशान हो, जलने का निशान हो, ये तमाम निशानात रिमूव हो जाते हैं। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा और रात के टाइम लगा सकते हैं, फेस वॉश लाजमी कीजिएगा। कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो फेस वॉश करना लाजमी होता है, तो लाजमी आप ये चीजों के ऊपर जब आप इन चीजों को और मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो यकीन जाने आप लोगों को बहुत अच्छी वाली जो है वो खूबसूरती मिलेगी। और साथ साथ आप डायल करते रहिए 03-15-799-0595, ये नंबर डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर आपके एरिया में ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सके। अच्छा हैप्पी बर्थडे टू यू वारो गानो हलायो गानो डेडिकेट करना सी ऐसा अनवर भाई जे पुट के, ठीक है अनवर भाई ही गानो तमां जे पुटड़े जे नाले आहे उन जी सालगिरह आहे, सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। सही ही गानो असान जी तरफा सानी पूरी टीम जी तरफा तमां के डेडिकेट आहे। वरी अला ईअं थींदो आहे न मयारूं अहिड़ियूं ॾींदा आहियो मूंखे, मुंहिंजा लिसनर्स अहिड़ियूं मयारूं ॾींदा आहिनि, मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे हलुड़ी मां केॾो कुझु कंदी आहियां तव्हांजे लाइ पर पोइ बि तव्हां मतिलबु मूंखां ख़ुशि न आहियो थींदा पर चलो ठीकु आहे, मूंखे लॻंदो आहे कॾहिं मुंहिंजा लिसनर मूंखां ख़ुशि कोन थींदा, सो ख़ैरु आहे बसि न थियो भले ख़ुशि। तव्हां बसि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु लाज़मी कजो। सही आहे, हुन खां अलावा अगरि तव्हां कॉल करणु चाहियो त कॉलिंग नंबर आहे 0332132888 0332132138, असांजी कॉलिंग नंबर आहे। मां कुझु कॉल्स वठंदमि हुन खां पोइ तव्हांजे कॉमेंट तरफ़ अचूं था, ठीकु आहे।

0: प्रोग्राम व्हाइट एश एंड ईस्ट इन ब्यूटी शो आहे जनाब मैं हिते कॉल वठूं था कॉलिंग नंबर आहे 0332132288 कॉल हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: केड़ा से सगड़ मौजूद आ
1: शाम मसाए जो तो गंदा
0: ओके किथा कॉल किया प्यारा भा
1: जिलो खैरपुर
0: ओके खैरपुर मां कॉल किया जिले खैरपुर मां मुखे बधाई प्रोग्राम बदना है सांजो इो भी तुम मोहब्बतू आन कभी कभी भी बुधा कर मुझे बुधाओ इन प्रोग्राम जो क्या नालो तक खबर आ जी जी वाइट एश ब्यूटी क्रीम ओके इरादो आ इस्तेमाल कदा या इस्तेमाल कर पाया अच्छा टॉपिक बुध अव अच्छा केड़न दोस्त ने याद कंदा ओके थैंक यू सो मच प्रोग्राम में कॉल के प्यारा बा

0: ओके दी कॉलिंग नंबर आहे 0332132288 ही वारी कॉल वठू था ॾिसूं त केर असां सां गॾु मौजूद आहे हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम भाजी
0: वालेकुम अस्सलाम केर मौजूद आहे
1: भाजी शिकापुर खां जमालदीन भयो
0: ओके जमालदीन भा छा हाल कुझु आहियो
1: अलहमदुलिल्लाह शुक्र अलाह सभु ख़ैर असां खां पिया भाजी
0: जी जी जी जी प्रोग्राम ॿुधो पिया
1: जी जी बिल्कुलु भाजी ॿुधो पिया
0: टॉपिक ते छा चवंदा क्रीम इस्तेमाल कई आहे कहिड़ी चलो साबुण लॻाए पिया मोहबतूं आहिनि पहिरियनि भाउनि जो प्रोग्राम ॿुधो पिया सो थैंक यू सो मच ओके जी मैडम आप जी की आवाज लगाई है लिस्ट में तो हम बताएंगे किसने फरमाइश करी लेकिन ये वाली भी हम कॉल ले लेते हैं ओके सो कॉलिंग नंबर 0332132288 हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: केर मौजूदा
1: आखिर लखनीर से बनाया मोरो का
0: ओके मोरो का कॉल किया प्रोग्राम बदो पे आसान जो आवाज कट जी तो हेलो जबरदस्त जबरदस्त मुके बुधाए इस्तेमाल कयो पया मोरो में मिली थी
1: जी जी मोरो में मा सुभाणे वठी ईंदो मा जांच कराई आहे दोस्तन भी बुधायो आहे त मोरो में मिले थी
0: चलो जबरदस्त जबरदस्त केड़न दोस्तन की याद कंदा टॉपिक ते छा चवंदा
1: टॉपिक ते मां जे अगरि हिकिड़े ॾींहं जे लाइ फेमस थींदुसि त ग़रीबनि जी ऐं माज़ूरनि जी ऐं मिसकिननि जी यतीमनि जी मदद कंदुसि
0: हिकु ॾींहं में करे सघंदा चलो कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा
1: दोस्त आहिनि

0: நெக்ஸ்ட் காலர் கே ரெசஸ் செகண்ட் மாஜோதே ஹலோ அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஐயோ சா இயா கேடியா இருக்குதா சாதே பர்வாதி ओके जी और हम ये वाली कॉल लेते हैं देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सगर मौजूदा
1: अलीजा
0: अलीजा कॉल करिए आप अच्छा मीरपुर क्लास का कॉल मैं ठीक आप बताएं कैसी हैं अलीजा
1: मैं भी ठीक हूँ
0: ओके टॉपिक के ऊपर क्या कहेंगी अलीजा
1: टॉपिक तो आज मैंने सुना नहीं है बता दें
0: टॉपिक ये है कि अगर आप एक दिन के लिए फेमस हो जाएं तो उस एक दिन में आप क्या करेंगी फेमस इंसान अपनी जिंदगी गुजारते हैं आप देखकर सोचती है ना कि भाई मैं भी अगर फेमस होती तो ये करती
1: मैं सबकी मदद कर दी जो भी गरीब है उनकी
0: चलिए मुझे ये बताएं कि कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है
1: मैंने आपको बताया था ना कल कि मैं प्रोडक्ट कोई इस्तेमाल नहीं करती अभी तो पर यकीनन मैं करूंगी जरूर
0: चले मिल रहे मेरे प्रकाश में या फिर अभी तक यही शिकायत है कि अभी अवेलेबल नहीं हुए
1: नहीं मैं गई नहीं ना अभी
0: चले आप मालूमात लीजिएगा फिर मुझे बताइएगा ठीक है
1: इंशाल्लाह दो तीन दिनों में जाऊँ
0: ठीक है और कुछ कहेंगी
1: अभी तो टाइम नहीं है वरना फरमाइश करती
0: चले ठीक है रहने देते हैं और दोस्तों को याद करें जरा ओके थैंक यू सो मच अलीजा मेरी प्यारी सी परी आप प्रोग्राम में कॉल करती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है आपसे बात करके खुश रहें और ऐसे ही मुस्कुराती रहें और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि अब कॉल जो हैं वो जरा सी साइड पर रखते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही थोड़ा सा है और आपके मैसेजेस भी मैंने पढ़ने हैं आपके कमेंट्स भी पढ़ने तो जरा उनकी जाने भी आ जाते हैं और शोनी हमारे साथ कहती है यहाँ पे जाननी मैं भी आ गई आपके शो में एक बात बताऊँ आप ही मेरी मम्मा कहती हैं मुझे और भाई को कि पता नहीं आपके स्कूल और यूनिवर्सिटी कब ओपन होंगी पूरा दिन आपने घर जो है वो सर पर उठाया हुआ है तो आप इतनी शरारतें मत किया करें ना कि अम्मी जान को ऐसा बोलना पड़े और उसके अलावा हैं जी ये साइम अमीर कहती है वाह ग्रेट बस साइमा ये तमाम जो तारीफ़ों खपन बाकी थे बाकी सब फर्स्ट क्लास है अच्छा विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन हमारे साथ हैं दिलावर हुसैन सोलंगी भाई बारी सिद्रा अगर मैं एक दिन के लिए फेमस हो गया ना तो सबसे पहले मैं बारी सिद्रा और इमरान खान से मिलता क्योंकि मैं दोनों का फैन हूँ और थैंक्स भाजी आबदा परवीन जी का गाना लगाइएगा डेडिकेट आसिफ सोलंगी मुदस्सिर और मुबशर सलीम एंड शहबाज के नाम ओके जी अच्छा किशोर भाई कहते हैं फेमस होकर गरीबों की कैसे मदद होगी मैं वही सोच रही थी क्या पता वो सोच रहे होंगे कि हम फेमस होंगे तो हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा तो हम लोगों की मदद कर सकते ये भी हो सकता है ओके जी मायरा भी हमारा शो सुन रही है थैंक यू सो मच मायरा

अरे दर्दे दिल कहती हैं कि जगा दो मुझे, हटो हटो। अस्सलाम वालेकुम चंदा, आप कैसी हैं? वैसे आज आप आने में जरा थोड़ा सा देर हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए वाला सीन बनाते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि मानो भले। थैंक यू। एम अंसारी कहते हैं कॉल नंबर बताओ। कॉल नंबर है 0332123228। आप कल ट्राई कीजिएगा, ठीक है? दर्दे दिल कहती है सॉरी आई एम लेट। थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा ज्यादा। हिदायत अल्लाह कहते हैं वैसे मैं बहुत खुश हूँ आपसे। दर्दे दिल भी कहती हैं हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। चले ये तो दो दो लोगों का हो गया ना, बाकी सारे लोग तो नहीं बोल रहे ना। और हाले सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम। ओके ये क्या कहते हैं, अदी कल जे को ता किरायो वधायो ना, उनजे करे जो बस में रश घटा, तो फिकर न कर अल्लाह वडो ना। वैसे सच्ची बताया तो जदी रश थोड़ी घट होंदी ना, तो मुखे लगंदो आ सुकून आ जो लाइव शो प्रोग्राम में मां ई फील कनी आ, तो मतलब मां रिलैक्स थी करे प्रोग्राम के।

जॾहिं रश हूंदी आहे न अला लास्ट में मां सफ़ा थकिजी पवंदी आहियां सो अॼु लास्ट ताईं जेको आहे मां पाण खे फ्रेश फील कयां थी सो चवंदा न मतिलबु मुंहिंजी अमी इहो मिसाल ॾींदी आहे थोरा कणा थाली में भला सो सम्झो था अब्दुल्ला महर भाई ये गाना आपको डेडिकेट जाता है और जी साथ साथ आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर वाई थी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इनका इस्तेमाल कर रहे हो मुझे बताएं जरा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे लग रहे हैं आप इस्तेमाल कर चुके हैं या फिर नहीं और दर्द दिल कहती है कि मेरी फ्रेंड है हाले सुल्तान उसको वेलकम करें हाले सुल्तान आपको खुश आमदीद कहते हैं जी हजार खंड जतोई भाई वालेकुम अस्सलाम पोस्ट को लाइक और शेयर करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया हाँ एक दिन में वाकई कुछ नहीं होता अशोक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं हेलो फ्रॉम दिल्ली अच्छा मोहम्मद अली खोसू भाई हमारे साथ हैं थैंक यू आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है

अच्छा गानो ॾाढो भलो हलायो अथव, मां गाने सां गॾो गॾु तव्हां खां इजाज़त वठंदो, टाइम बि थी चुको आहे, सो मोकिल वठंदासीं इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाक़ात जेका आहे त मुंहिंजी सुभाणे थियण वारी आहे 1 बजे खां 3 बजे ताईं तव्हांजो असांजो साथ हूंदो आहे बाबा प्रोग्राम में, सो पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्यालु रखंदा कयो, किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां थी, को अहिड़ो लफ़्ज़ ॻाल्हायो हुजे जेको तव्हांखे सुठो न लॻो हुजे त हुनजे लाइ माज़रत, ऐं तव्हांखे चवंदी वेंदा त बाबा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजे या वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजे तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो ऐं पोइ मूंखे ॿुधाइजो त तव्हांखे कीअं लॻा, हुन सां गॾोगॾु मोकिलाइणी नाहे बाबू सिन सलामत सां सलामत अला हाफ़िज़ बाय लव यू ऑल एंड

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: चौवीह कलाकों दौरान जो को कुछ थो है केर भी नो मनी सके तो इसराइल अमरीकी मर्जी का सिवाय का हरकत करे। तेहरान मुल्क की सलामती तोड़े दिफा ला तैयार है। अमरीकी सदर के रोकण बावजूद इसराइल जा ईरान में मुख्तलिफ शहर से हमला। जवाब में ईरानी फौज पर इसराइल के मिजाइल की बरसात कर छी। इसराइली हमलन सबब तेहरान अस्पान तबरेज और बिन शहर के नुकसान पौतो। ईरानी फौज जब इसराइल के शहर तुल एब ते हमला। इमारतों मुतासर ईरानी हमलन बाद इसराइल जा तालीमी इदारा बंद। बेन गोरियन अडे से भी इमरजेंसी लागू कई वही। इसराइली फौज है तो ईरान के दिफाई ठाकुर के निशाना बड़ा है। इसराइल जवातम बेस आयतुल्ला

चयो आहे त गिलगित बल्तिस्तान में अवामी मैंडेट ते धाड़ो हणण जी मुनज़िम साज़िश कई पई वञे। जिन तकनि ते पीपल्स पार्टी गुज़िरियल राति ई खटे चुकी हुई उन्हनि जा नतीजा ॼाणी वाणी रोकिया पिया वञनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी वाज़ह बरतरी खे तरक़रारी बणाइण लाइ नतीजा रोकण ऐं तब्दील करण जी कोशिश कई पई वञे। इलेक्शन कमीशन नतीजनि जे ऐलान में देर छो पई करे मैंडेट चोराइण जी कोशिश बंदि थिए त एहतजाज कंदासीं।

सिफारतकारी जो मैदान गडियल है ईरानी मुफादन के तहफुज लाए अस बेमई मैदान इस्तेमाल कदासी जंगबंदी ते कारबंद रहासी भले कड़ी अमरीका इसराइल कर रहा है।

कराए छो नारी हुरन चाचड़ चयो तो चैन जवाबदार निसार चाचड़ मुश्ताक चाचड़ अमीर चाचड़ ऐ जमीर चाचड़ शराब के नशे में धुत थी वालदैन सामू गैंग रेप कयो जवाबदार मा जान के खतरो है तहफुज दिनो वने मुतासिर नारी चयो तो मुख्य जवाबदार मुश्ताक चाचड़ ऐ निसार चाचड़ अजा ताई गिरफ्तार नाहन थी सकिया जवाबदार के गिरफ्तार करे सख्त सजा दिनी वने वकील अनवर लोहार चयो तो जांच कंदड़ टीम अंदरी ना है जवाबदार की धुर बढ़ल है ऐ केस खराब करण चाहे थी अदालत के नोटिस बावजूद बासर जवाबदार पेश न थिया मुतासिर नारी के पीछे तो जवाबदार धमकियों दे रहा है इंसाफ कयो वञे।

आई कराची में FIA में भर्ती लाए SSU पुलिस हेडक्वार्टर में फिजिकल टेस्ट दौरान टे जाली उम्मीदवार गिरफ्तार FIA टीम में जे एहलकारनि कागज़नि जी जांच पड़ताल दौरान ॿियनि उम्मीदवारनि जी जाइ ते टेस्ट ॾींदड़ जवाबदार पकड़े वरिता FIA तर्जुमान मूजिबि जवाबदार बख़्तियार उम्मीदवार सोनो ख़ान जी जाइ ते शमन अली हादी बख़्श ऐं अमजद आफ़्ताब जी जाइ ते टेस्ट ॾेई रहियो हो जवाबदारनि असल उम्मीदवारनि जी जाइ ते फिज़िकल टेस्ट ऐं दौड़ वारे टेस्ट में हिसो वठण जी कोशिश कई।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
2: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: हाणे हैरत अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालेज, शुगर, दिमागी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, पर जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
4: हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 3:15 PM.
2: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: सऊदी अरब, वो तो सबकी दिली ख्वाहिश है, वो तो सबकी दिली ख्वाहिश है, लेकिन एक को फिर सबके सब फॉलो करते हैं। अब एक बंदे ने आके ये कह दिया कि नमाज पढ़े, तो फिर सारे के सारे लिसनर्स भी यही रट्टा लगाएंगे। तो कोशिश किया करें, कॉपी ना किया करें एक दूसरे को। लेसन ऑफ लाइफ अगर समझ आ रहा है तो पार्टिसिपेट कीजिए, नहीं तो खामोशी से भी आप हमें सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक भाई, कौन बात कर रहा है? अच्छा, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, जिंदगी से क्या सबक सीखा है आपने, कुछ इस बारे में बात करेंगे?
1: हाँ हाँ
0: जी, बताइए।
1: हेलो जी, जिंदगी में मैंने ये सीखा है कि अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपने दब के रहें, किसी का आसरा न किया जाए, जो है हमने किसी दूसरे से कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए जो मिलना है सबको करना।
0: जबरदस्त, गुड हो गया, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। आप शामले प्रोग्राम
1: नहीं, हमारा एक दोस्त है, उसको सलाम देना चाहिए अगर आप चाहें तो।
0: जी जी, कह दे अपने एक दोस्त को सलाम,
1: आरजे रुखसार को सलाम।
0: चलिए ठीक हो गया, चलिए बहुत शुक्रिया, ढेरों सलामती तमाम सुंदर समातों पर जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम कहेंगे आप हवाले से। अच्छा, ये सबक सीखा है आपने कि पैसा सब कुछ है, पैसे के सिवा कुछ भी नहीं है जिंदगी।
1: हाँ,
0: चलें ठीक हो गया, आप भी दोस्तों

0: को याद करेंगे. चलिए जनाब, सबकी जानिब से वालेकुम अस्सलाम, ढेरों सलामती आपके लिए भी. हर एक शख्स की लाइफ का एक्सपीरियंस चेंज है, किसी का भी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ सेम नहीं होगा. तो आपने बताना है आपकी जिंदगी का सबक, आपने जिंदगी से क्या लेसन सीखा. ये क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था पर्सनली, तो मैंने सोचा चले जी मैं अपने लिसनर से अपने प्रोग्राम में पूछ लेती हूँ. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम
0: सलाम जनाब, वेलकम कहेंगी. कौन बात कर रहा है? खुश आमदीद कहते हैं आपको. आपकी आपने जिंदगी से क्या सबक सीखा? कोई एक बताएंगे? चले अच्छी बात हो गई. दोस्तों को याद करेंगे आप भी? ठीक है आदा, मेहरबानी तमाजी सबनी पारा, थैंक यू. और जनाब लेसन ऑफ लाइफ, जिंदगी से क्या सबक सीखा है आपने, ये आपने मुझे बताना है. और मैं आपको वही बताने वाली हूँ जो डेली इस वक्त बताती हूँ, एज यूजल आपको बताने वाली हूँ. कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, तो जनाब इस छोटे से तशहीरी वक्फे के बाद अगेन आपको ज्वाइन करते हैं.

0: की हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क।
1: हाण डंदन जी बीमारियुनि में मुब्तला मरीज बिल्कुल परेशान न थे।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: Japan. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White Age Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bhatpoor khubiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White Age Beauty Soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White Age Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं परोस जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99

0: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
1: वीरपुर खास शहर में डॉक्टर दोहा राजड़ एस्थेटिक एंड डेंटल क्लिनिक ते लेडी डॉक्टर डॉक्टर दोहा राजड़ कंसल्टेंट डेंटल सर्जन BDS लम्स जाम शोरू RDS MSc डिप इन इम्प्लांटोलॉजी UK सर्टिफाइड एस्थेटिशियन लेक्चरर मोहम्मद डेंटल कॉलेज इब्न सीना यूनिवर्सिटी मीरपुर खास मुख्तलिफ़ डंदन जी बीमारियुनि यानी डंदन जो सूर डंद किरण डंदन जी फीलिंग अकुल डाठ कढ़ण जबड़े जो सूर मसनू डंद लगण कढ़ण लाहण ऐं चाढ़ण डेंटल इम्प्लांट बटी डंद लगण टेड़ा मेड़ा डंद सीधा करण डंदन जी सफाई ऐं पॉलिशिंग बायोप्सी मसूड़न जी सोजी डंदन जे हर किस्म जा टांका खोलण ऐं लगाइण ऐं डंदन मां रत जो वहण जो इलाज कयो वेंदो आहे। नोट, लेडीज जे लाइ ख़ास पर्दे जो इंतज़ाम थियल आहे त अव्हां बि लेडी डॉक्टर दोहा राजड़ वटि अचो ऐं पंहिंजे डंदन जो इलाज करायो। टाइम सुबुह जो 11 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं। एड्रेस, फर्स्ट फ्लोर लम्स लेबोरेटरी जे मथां, न्यू टाउन मीरपुर खास। राब्ते जे लाइ मोबाइल नंबर 0335-79-77-707-0313-3841-344।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन। खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरनि में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, परोस जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस, हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
4: सिंध के माथे का झूमर
5: DFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: 6615688. SMS के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में MP के लिखना है कि स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना करना है 8881 पर गोट मीर शेर खान तालपुर से मीर अलहरिनो खान तालपुर। आपका शो वेरी वेरी नाइस है, सलाम आपको। वालेकुम अस्सलाम, सेम टू यू अदा, थैंक यू। अच्छा जी, ये हमारे साथ हैं प्यार अली जरवार बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। बाजी इतनी लंबी छुट्टी, अच्छा मेरी छुट्टियों पे मट्टी डालें। आगा मैसेज रीड करती हूँ। बाजी दो मसले हैं, उनका हल बताना। ओके, ये मैंने कब से ये काम स्टार्ट किया है, मसले हल करने वाला। हाँ बाजी, जब हम नमाज पढ़ने का सोचते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हो जाता है, जैसे कि शॉप पर कस्टमर्स आ जाते हैं, या फिर दिल घबराता है, घबराहट सी होने लगती है। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको ये वाला सवाल दूंगी कि ये जवाब दूंगी। मौजिन ने अल्लाह अकबर कहा, बाबा जी ने पकोड़ों की कढ़ाई के नीचे शोर मचाते चूल्हे को बंद किया, बोले दोस्तों थोड़ा सा इंतजार कर लो, बुलावा आ गया है, हाजिरी लगवा के आता हूँ। और बाबा जी जो है जल्दी में चले गए, दो तीन कस्टमर आए थे, वो बुड़बुड़ाते हुए वापिस चले गए। जब बाबा जी नमाज पढ़ के वापिस आए, तो मैंने उन्हें कहा कि बाबा जी आपके दो तीन कस्टमर चले गए हैं, तो उन्होंने ये बात नजरअंदाज कर दी। मैंने कहा कि रिस्क हलाल की कोशिश भी तो इबादत है, आप कस्टमर के को फ्री करके भी नमाज पढ़ सकते थे। तो बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, मेरे मालिक ने कितनी मोहब्बत से फलाह की तरफ बुलाया है, मैं रिस्क की कमी की गर्ज से रुक कर फलाह का मौका नहीं गंवाना चाहता था, रिस्क तो मिलता रहा है, मिलता रहेगा, लेकिन कभी उसकी आवाज पर लपक कर तो देखो। तो मैं आपको जस्ट यही कहूंगी कि रिस्क तो हर दरवाजे पर अपने वक्त के मुताबिक पहुंच जाता है, मगर फलाह की आवाज किसी किसी के दिल पे दस्तक देती है, कई कान इसे करीब से भी नहीं सुन पाते। तो आप दुआ ये किया करो कि अल्लाह ताला आपको वो दिल दे दे जिस पर ये आवाज दस्तक दे, ये अल्लाह की मोहब्बत की आवाज है। बहुत से लोगों के जो है कानों में ये आवाज पड़ती है, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है, नेक्स्ट आपने ऐसा हरगिज नहीं करना है। क्योंकि जब आप लौटाना होगा ना ये कर्ज आपको, तो आपके हाथ खाली होंगे, फिर आप कैसे ये वाला मामला क्लियर करेंगे। और रब की पकड़ इंसान की अगर एक मिनट में निकाल देती है, तो हम नहीं चाहेंगे कि आप रब की पकड़ में आए। फराइज की अदायगी में कोताही नहीं करनी है। और आप कहते हैं एक मौजिज बंदा शॉप पर आ बैठता है, वो बड़ी उम्र का है, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है, लेकिन अपने आप को बहुत ही हॉनेस्ट पढ़ा लिखा समझता है, सिर्फ आना नहीं छोड़ता। बाजी आना नहीं छोड़ता, और उनकी वजह से अच्छे खासे मेहमानों ने आना छोड़ दिया है हमारी शॉप पर। उसका कोई हल निकालो बाजी, आने वाले मेहमान से अच्छा सलूक नहीं रखता। चले जी, कोशिश किया करें हल्के फुल्के अंदाज में, जैसे हम आपको छोटे छोटे वाकयात सुनाते हैं ना, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो अगर ये ओल्ड एज आपकी शॉप पर आते हैं, तो आप इनसे ऐसे ही अच्छे अच्छे वाकयात शेयर किया करें, उनकी भी तसीह होगी, गैर महसूस तरीके से उनकी इस्लाह हो जाएगी। और प्रॉब्लम ये है कि वो आपके गेस्ट हैं, उन्हें आप ये तो नहीं ना कह सकते कि बात सुनो, खबरदार दोबारा हमारी शॉप पर नहीं आना। ये उनकी दिल आजारी होगी, और जो आपको सख्त ना पसंद है, आप अपने काम में मसरूफ रहा करें, आपका फोकस अपने काम पर होना चाहिए। जनाब बहुत शुक्रिया, आपके दो मसले आई डोंट नो हल हुए या नहीं, मैंने जो मेरी कम फहम अकल के मुताबिक आंसर्स थे वो आपको बताए हैं। सबसे ज्यादा आम की पैदावार किस कंट्री में, किस मुल्क में की जाती है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आम की पैदावार किस मुल्क में होती है, कहाँ की जाती है, ये आपने मुझे बताना है। और ये बताने के लिए डायल करना है 0313-6615688। मैं आपकी कॉल्स की जानिब करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा
1: है?
0: अदा, सबसे ज्यादा आम की पैदावार किस मुल्क में की जाती है?
1: इंडिया।
0: पक्की बात है, सोच लें।

0: जवाब तो नहीं है?
1: नहीं, पक्की
0: वाला। ओके, था आपका आंसर बिल्कुल राइट है। थैंक यू सो मच, आप शामिल प्रोग्राम हुए।
1: थैंक यू।
0: ओके जी, इंडिया पड़ोसी मुल्क है ना, जो हिंदुस्तान भी कहा जाता है जिससे, तो ये राइट आंसर हमें अदा इकबाल ने दिया है। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है दुनिया के किस मुल्क में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं, ये आपने मुझे बताना है। ओके, अगर आपको मालूम है सवाल का जवाब, मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में एमपी के लिखना है, कि स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना करना है 8881 पर। आपकी कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। अगेन लाइव कॉल नंबर बता देते हैं 03136615688। दुनिया के किस मुल्क में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं? ओके जी, ये आपने हमें बताना है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है?
1: सबसे पहले अपनी बेटी के लिए दुआ, अल्लाह पाक आपके दामन में मन पसंद खुशियाँ डाले और आपको फिक्र व अमान और पनाह में रखे। जितनी भी आपकी जिंदगी है खुदा उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे।
0: आमीन, जज़ाकअल्लाह।
1: मैं नाम आपको अपना बताऊंगा, बेटी को ना, आपकी आवाज जो है वो कितनी भी भीड़ में आप देखी रहे बोले तो आपकी आवाज मतलब और क्लियर आएगी कि ये मेरे बेटी की गुरनाज की आवाज है।
0: बहुत शुक्रिया जनाब आपका, उसने समाते आपने आई थिंक सखर से कॉल की है शायद।
1: सॉरी
0: अंकल, मैं आपका नाम भूल गई थी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। काफी अरसे बाद आपने हमें ज्वाइन किया, क्या हाल है आप? ठीक है,
1: आपसे ठीक ही, आप दुआ किया करें। जमाना है, दुनिया है, उसके काफी कुछ मसाइल हैं, तकलीफें हैं, उनको सेलिब्रेट करना पड़ता है, आगे पीछे हो जाते हैं और सच्चे लोग तो तकलीफों में ही होते हैं, वो आपको मालूम है,
0: इसमें कोई शक नहीं है। और मैं जस्ट आपसे यही कहूंगी कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। जब भी मैं बहुत ज्यादा मतलब डाउन हो रही होती हूँ तो मुझे ये आयत याद आ जाती है, एक नई एनर्जी मिल जाती है। मैं आपसे यही कहूंगी, हर मुश्किल के बाद आसानी, आपकी जिंदगी में ढेरों आसानियां रहते हैं, इंशाल्लाह जल्द आएंगी। अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी उम्मीद रखें।
1: बिल्कुल आएंगी, मैंने जो आपका पहला जिंदगी एक नेमत है, जिंदगी सबक है, जिंदगी सिखाती है, लेकिन उसको पहचानने वाले लोग होने चाहिए। जिंदगी सफर का रास्ता बताती है, जिंदगी सबक देती है, उसमें काफी कुछ मतलब रास्ते बताती है। जिंदगी आजमाइश है, लेकिन जिंदगी खुशियों का नाम तो नहीं है, जिंदगी दुखों का नाम है। अगर दुखों का आपने कदर कर लिया तो आपने जिंदगी को समझ लिया और जिंदगी में जो कुछ आपने पाया है उससे सीखते जाएंगे। जिंदगी कुछ देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है।
0: बेशक जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, लेकिन मुझे ब्रेक भी लेना है। थैंक यू सो मच, आप अपना ख्याल रखिएगा।
1: अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, गसाबाद रहें, उस्ताद रहें, बचबाद हबीबपुर शिकारपुर वाले को मैं सलाम कहता हूँ, अल्लाह उसको सलामत रखे, आप सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम,
0: जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया, ढेरों ढेर बेस्ट विशेज आपके लिए भी। और ब्रेक पे जाने से पहले सवाल का जवाब हम ही बताते चले, क्योंकि हमारे सीनियर लिसनर थे, मुनासिब नहीं लगा उनकी बात कट की जाए। तो मैंने पूछा था दुनिया की किस मुल्क में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं, ये मुल्क वैसे मैं अगर आप मुझे आंसर्स देते तो मैं आपको थोड़ा बहुत जो है ना इशारतन बताती, ये मुल्क आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है। जब भी आप टेलीविजन पे न्यूज चैनल लगाएंगे इस मुल्क का नाम आपके कानों में लाजमी आएगा। अमरीका कहते हैं उस मुल्क को जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं। तो जनाब ये है राइट आंसर। और ब्रेक टाइम है, ब्रेक के बाद दोबारा से हम और आप फिर से साथ साथ।

हर पहल जिंदगी। टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

का महवर इंसानों को हरगिज नहीं बनाना है आप लोगों ने। हाँ, रब्बे कायनात जो तखलीके कायनात हैं, जो खालिक हैं हमारे, उनसे तमाम तरह अच्छी

0: ईरानी वडे वजीर अब्बास राखी जा इसराइल सा झड़पन बाद मुख्तलिफ मुल्कन जे हम मनसबन सा राबता अब्बास राखी फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर सा भी गाल बोल कई ईरानी वडे वजीर सऊदी तुर्किया कतर ए फ्रांस से भी हम मनसबन के फोन कयो इसराइल सा पैदा थियल मौजूदा सूरत हाल ते गाल कयो बल्तिस्तान चूंडन में पीपी मैदान मारे वरतो जालन जो जशन 24 सीटन में 18 सीटन जा नतीजा अची गया गैर सरकारी गैर रस्मी नतीजन मूजिब पीपल्स पार्टी 9 सीटन ते कामयाब बिन सीटन ते नवाज लीग एक ते वहदतुल मुस्लिमीन 6 सीटन ते आजाद उम्मीदवार कामयाब थे बिलावल भुट्टो जरदारी जो कामयाबी ते जालन के मुबारकू बिलावल भुट्टो जरदारी चौक जीबी में हुकूमत ठाहिण जी कोशिश कंदासीं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां जीबी जी चूंडनि में कामयाबी ते पीपल्स पार्टी खे वाधायूं शहबाज़ शरीफ़ चयो त सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे कामयाबी ते वाधायूं ॾियां थो नून लीग जी टीम बि इलेक्शन में भरपूर महिनत कई
1: More evidence than ever presented.
2: Let's talk
1: your
2: about
1: elections you in this country. Before. We're like a third world country.
2: Yes,
1: your elections are crooked, and you're crooked, and the press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. Your one-sided crooked networks. All right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good
2: Mr.
1: time.
2: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
1: I've sat
2: I traveled
1: in rain.
2: All I know. I traveled
1: rain
2: all the way
1: for
2: to
1: an
2: Wisconsin.
1: Hour, on and off in the rain, and I've given you enough time. You're going to straighten out your press because you know what?
2: Mr. President,
1: a country can never be great with a dishonest.
2: Listen, we traveled all the way to Wisconsin before the committee.
0: अमरीकी सदर ट्रंप चूंडन में धांधली वारे सवाल जो जवाब ॾियण बदिरां साफ़ी ते कावड़ जी पियो इंटरव्यू दौरान माइक ज़मीन ते उछली हलियो वियो मुख़्तलिफ़ चैनल सां नाला खणी तनक़ीद ट्रंप मीडिया खे कूड़ा ॾींदे चयो त चूंडन में धांधली थी हुई सेनेट जी प्लानिंग डेवलपमेंट कमेटी जो चेयरपर्सन कुरतुलेन मरी जी सदारत हेठि इजलास सक्कर हैदराबाद मोटरवे कम शुरू न थियण ते मेंबर्स जो सख़्त एहतजाज सक्कर हैदराबाद मोटरवे वारे मनसूबे क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जे इजलास में वज़ीर आज़म वाडो रखण जी हिदायत कमेटी मेंबर्स जाम सैफुल्ला दारे जो सैफुल्ला अबड़ो ऐं सिंध सां रोड जे मामले ते ज़्यादती थी रही आहे ॿिन वज़ीर आज़मनि जे इख़्तिताह बावजूद सक्कर हैदराबाद मोटरवे ते कम शुरू नाहे थियो मार्च में कम शुरू करण जो वाइदो कयो वियो पर टे महीना गुज़री विया आहिनि कम शुरू नाहे कयो वियो मामिलो वज़ीर आज़म वाडो रखियो वञे आज़ाद कश्मीर जे ॿियनि ज़िलनि जीअं कोहाला में बि अवाम एहतजाजी सड खे रद्द करे छॾियो आज़ाद कश्मीर जे ॿियनि ज़िलनि जीअं कोहाला में बि ज़िंदगी मामूल जीअं जारी आज़ाद कश्मीर में कोहाला पुल ते ट्रैफ़िक जी रवानी मामूल मूजिब जारी कोहाला पुल ट्रैफ़िक लाइ मुकमल बहाल कोहाला में सभई नंढियूं वॾियूं बाज़ारूं ऐं वापारी मर्कज़ बि खुलियल मदेजी जे ॻोठ दड़ो में घर अणपणता औरत कतल मुसमात साहिरा कंदर खे खुटा ॾेई क़तल करण जो इंकशाफ़ लाश अस्पताल मुंतकिल औरत जे वारिसनि मूजिब ॼाणीअ खे संदसि मुड़ुसु अताउल्ला कंदड़ नशरत कंदो हो औरत खे मुड़ुसु घुटा ऐं ज़र ॾेई मारियो आहे जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वञे नवाबशाह जे ॾिसी मंडी भरिसां वाटर कोर्स मां नामालूम शख़्स जो लाश आहे इतला ते पुलिस लाश अस्पताल मुंतकिल कयो सुञाणप न ॾिनी पुलिस मूजिब लाश कंहिं दरवेश जो लॻी रहियो आहे कंबट ऐं बरपासे में पकड़ियल एचआईवी ते ज़ाब्तो न आयो एचआईवी जा वधीक चार शकी वार गेम्स दाख़िल धींगर मोहम्मद यूसुफ 12 महीननि जी नूर फातिमा 6 महीननि जी हुरेन ऐं 10 महीननि जो आर्यान में एचआईवी जो ख़दशो इंतज़ामिया मूजिब ॿारनि जूं पीसीआर रिपोर्टूं मोकिलियूं आहिनि रिज़ल्ट हिन वक़्त ताईं नाहे आयो रिज़ल्ट अचण ताईं तसदीक नथा करे एचआईवी जा शकी मरीज़ साम्हूं अचण सबबि पोइ फैसलो थियल पैदा थियो कादिरपुर ऐं बरपासे में उड़ीअ ज़ाब्तो न आयो वधीक वबार फोत घोट मोर सुंदराणी में नींगर ऐं नींगरी उड़ी वेगे फोत थिया इलाइक़े वासियुनि पारां डॉक्टर मोकिलण जो मुताबो हैदराबाद पुलिस पर मुबैन मुकाबले में बिन लोहारियन के मरण की दावा। पुलिस पहुंची मुबैन मुकाबले में मारजी वेलन जी सुणप पुर खान सुमरो ए अब्दुल रशीद जोड़े जो टिन नालन साथी आए। मारजी वेल बई लोहारी एमएनए नवीद कमर के सोट के घर में चोरी में भी मुलविस हुआ। वधीक जांच जारी। मेहरान पुल वट मोटरसाइकिल से सवार बिन जणन के रोकण जो इशारो कयो तो उन्हें पुलिस से फायरिंग करी हुई। घोटकी वेझो मुबैन इज्तमाही लजाड़ जो शिकार नारी अदालत में 164 जो बयान रिकॉर्ड कर छो। पुलिस केस में नामजद जवाबदार जमी चाचड़ एमी चाचड़ के भी अदालत में पेश कयो। अदालत में बयान रिकॉर्ड करण का पोए केटीएन न्यूज से गालाइंदे नारी चयो तो मुश्ताक निस्तार जमीर अमीर चाचड़ मूसा जिनसी लड़ाई कई। पुलिस मुख्य जवाबदार मुश्ताक चाचड़ निसार चाचड़ के अं गिरफ्तार ना कर समूर जवाबदार की गिरफ्तार कर साफ कर वे। कराची में कुकेन क्वीन अनमोल उर्फिन के खिलाफ गार्डन थाने से दाखिल बिन केसन की बुधनी जांच ऑफिसर चालान पेश न कर सको। अदालत का बीहर मोहलत तलब। अदालत जांच ऑफिसर के मोहलत दींदे ईंदड़ बुधनी से चालान पेश करने जो हुक्म दिनों। पुलिस पिनकी बेन जवाबदार के वीडियो लिंक जरिए भी पेश न कर हुआ।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
3: सिंध के माथे का झूमर,
4: DFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़.

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सिर्फ गुलाम की है भाषा।

0: गुलाम बादशाह सुंदरी 12 जनवरी से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: माल तैयार है ट्रक खड़ा है मजदूर खड़े हैं बस एक चीज का इंतजार है पेमेंट कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट पर्स अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेक बुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
2: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
4: हम कहां के सच्चे थे दर्द पी के मरते थे जहर पी के जीते थे जिंदगी के धोखे में हर किसी से लड़ते थे हम कहां के सच्चे थे

0: कैसा महसूस हो रहा है?
1: उसे खो के जिससे तुम बहुत प्यार करती हो।
2: माजी था ये मेरा।
0: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।
2: तुम मुझसे बात करो।

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार।
1: क्यों?
0: क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल हम राही 27 मार्च से जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत और वो भी बेहतर कीमत में, पूरे 50 रुपए की बचत।

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
1: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो. जी हा, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालेज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे. होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब. टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं. एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरण. वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763.
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है.
3: सुनते रहो GFM 90.8.

0: Trino.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ईरान इसराइल की फौज हमला रोकण की तस्दीक कर छी। पासदार इनकलाब बेरूत से हमलन को भरपूर जवाब दिनों वो। इसराइली अहदेदार मौजिब सदर ट्रंप की दरख्वास्त ईरान से हमला रोकया। लेबनान में हिजबुल्लाह खिलाफ कार्रवाई जारी रहंद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बिन्हीं मुल्क का हमला रोकण जो मुतालबो कदे हो त ईरान से माहदे के वेझो आयूं, माहदे के खराब न कर वे। मीरपुर खास में जमीनी तकरार था पुलिस अहलकार कतल। गुलशन हैदर फेस बनवारे इलाके में मोटरसाइकिल सवार हथियार बंदन पुलिस अहलकार खालिद वरी के गोलियों हणी कतल कयो। मकतूल के भाग शहबाज बुधायो था जमीन की तकरार था ताबिश सूमर गुलशेर आली ए हसन संदस भाव के कतल कयो है। जवाबदार की गिरफ्तार कयो वने। पिथोर वेझो गोठ गुलाम रसूल आरिसर में बमासूम बड़ियों वाटर कोर्स में बुढ़ी फोत थी वयूं। 5 साल की शांति ए 7 वरियन की माधुरी ओड बुढ़ी फोत थी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हाने हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ जुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-700।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अस्सलाम वालेकुम। ये सकड़ नवाब शाह एफएम 90.8 जी लाइव स्टूडियो में प्रोग्राम सेहत जो राज होम्योपैथिक सा पेश के पे वनी माया मा जो पंजो मेजबान नादर अली मक्सी मुझे आवाज हवाओं जी लहरन वसीले जिते जिते भी पूछी रहे वाए उन सबनी मुदंदड़न के मुझे तरफा मोहब्बत ए सिख भरो सलाम शाल कबूल पवे समय नवा जा केड़ा हाल आइन उम्मीद त बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत सा हुंदा असा जी खोड़ सारी दुआओं अवा सबनी सजणन जे नाम जिते भी हुजो शाद आबाद हुजो खिलंदा मुस्कुराईंदा रहो अल्लाह पाक जे फजल अमान में हुजो। समित प्रोग्राम सेहत जो राज होम्योपैथिक सा असा सा गड आहिन सकण जा मशहूर ई मारूफ डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। डॉक्टर साहब DHMS RHMP पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट ए फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह सां वाबिस्ता आहिन। डॉक्टर साहब माहिर अमराज आहिन नक कन गलो पुराणो नज़लो निछू मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जा वधण जिगर जा मर्ज शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ TB हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे इलाज कयो वेंदो आहे। डॉक्टर साहब रोजाना सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे ताई हाजी इनायत क्लिनिक ते मरीजन जो मुआइनो कंदा आहिन। डॉक्टर साहब जो मालूमाती नंबर आहे 0327-9984-763-8984-763। डॉक्टर साहब जुमे जे ॾींहं ते सुबुह 9 वगे खां मंझंदि 12 वगे ताईं क्लिनिक ते मरीज़नि जो मुआइनो कंदा आहिनि। साईं लाइव कॉल जे लाइ अवां डॉक्टर साहब जो नंबर नोट कंदा इन नंबर ते अवीं कॉल करे डॉक्टर साहब खां पंहिंजी तबियत जे हवाले सां सिहत जे हवाले सां मशवरात वठी सघो था। डॉक्टर साहब असां सां गॾु लाइव स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। डॉक्टर साहब खां कचहरी बि कंदासीं, डॉक्टर साहब खां कुझु सवाल बि कंदासीं जेके डॉक्टर साहब जिन्हनि जा जवाब ॾींदा। त सभु खां पहिरियों डॉक्टर साहब जी तरफ़ हलूं था, डॉक्टर साहब खां हाल अहिवाल वटि कयूं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहिड़ा हाल आहिनि तव्हां जा?
1: अलहमदुलिल्लाह।
0: डॉक्टर साहब सभु खां पहिरियां तव्हांजो शुक्रिया अदा था कयूं, तव्हां पंहिंजी क़ीमती ज़िंदगी मां मसरूफ़ ज़िंदगी मां टाइम कढी असांखे टाइम ॾिनो, असांजे सामान खे टाइम ॾिनो।
1: ओके
0: जी सर। डॉक्टर साहब अवां असांजे सामान जे लाइ टॉपिक त अॼु शायदि हूंदो
1: टॉपिक त असां वटि खोड़नि जाम अलाए केतिरा टॉपिक ते अलाए केतिरा
0: टॉपिक बि कंटिन्यू कंदासीं सर। हुन सां गॾोगॾु असांजे कुझु सवाल बि आहिनि जिन्हनि जा अवीं जवाब बि ॾींदा।
1: जी बिल्कुलु, अवां पंहिंजे सवाल कयो, तव्हांजे सवालनि जो जवाब बि ॾींदासूं ऐं गॾोगॾु अव्हांखे टॉपिक ऐं बीमारी जे बारे में ॿुधाईंदासूं। गॾु अव्हांजी कॉल अचे उनखे रिसीव करे अव्हांजे सवाल जो बि जवाब ज़रूरु ॾींदासूं। अॼु जो प्रोग्राम सिहत जो राज़ होम्योपैथिक सां।
0: सर तमामु बहितरीन। सर हूअं त अव्हां जी पर्सनैलिटी कंहिं तारीफ़ जी मोहताज न आहे, पर असांजे सामान खे अव्हां पंहिंजे बारे में कुझु ॿुधाईंदा।
1: साईं असां पंहिंजे बारे में असां अव्हांखे इहो ई ॿुधाए सघूं था त असां आहियूं होम्योपैथिक डॉक्टर। असांजो कमु ऐं असांजो फरीज़ो इहो ई आहे त जेको पेशंट असां वटि अचे पियो उनखे चेकअप थिए। अच्छा चेकअप छा आहे, चेकअप में छा थींदो आहे, मेन डॉक्टर वटि वेठा आहियूं या न, साईं इहा शयूं हुननि खे। अॼु मूं वटि केस आयो हो मिरापुर जो, नगर चांडीअ जो, त उन केस में पेशंट मूं ॾे सिर्फ़ु छा पिया चवनि, जेल में सूरु आहे। अरे अच्छा, मूं हुननि खे अॼु गुप्तार मुंहिंजो इहो थियो, अबा सबर आहे? चए हा सबर आहे। कयो सबर कयो, तकड़ि न कयो, मूं वटि अचणु महिल तव्हांखे वेहण में टाइम ज़रूरु लॻंदो। त सब्र रखो पहिरीं मां पहिरीं ॾिसे वठां त मसइलो छा आहे, जेल में सूर छो आहे। त उनजो चेकअप में इहा शयूं निकितियूं त जेल त का बीमारी ई कान्हे का, उन जा असल में माइतो, जिगर ऐं गुर्दा टिनिनि शयुनि ते असरात थियल हुआ। त उन्हनि जे करे खाधो पीतो हज़म न पियो थिए, जिस्मानी कमज़ोरी थिए पई, कमज़ोरी थियण खां पोइ हॾनि में, चेहल में, मथे में सूर थिए पियो। हुजे इहा त ॻाल्हि ईअं सम्झ में अचे पई की असांखे त साल थी विया बसि सुयूं लॻारायूं था, गोरियूं खाऊं था, वक़्त ई फ़ाइदो, पोइ वरी साॻी ॻाल्हि। मुंहिंजो इहो त नुक़सानु आहे न अव्हां जे लाइ, अव्हांखे जेका तकलीफ़ आहे, जेका मर्ज़ु आहे, बीमारी आहे, उनजी दवा तव्हांखे मिली कान्हे का, फ़ाइदो किथां थिए। त चेकअप सां मुराद इहो चेकअप हूंदो आहे होम्योपैथिक जो, त पेशंट जेका चए पियो उनखे ॿुधी करे असां कंदाऊं साइड में, असां पेशंट जे चवण ते न हलंदा आहियूं। असां पंहिंजो ज़हन लॻाईंदा आहियूं त ॾिसूं पेशंट में इहा तकलीफ़ूं, मर्ज़ु ठीकु आहे, पेशंट चयो थी त हूंदसि, इन खां अलावा ॿी का शइ आहे या अहिड़ी का बीमारी अंदरि में पियल आहे त जंहिंजे करे हीअ सभु शयूं शुरू थी वियूं। त चेकअप सां इहा शयूं आहिनि, ऐं हीअ ई चेकअप जेको आहे उहा सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु होम्योपैथिक में मौजूदु आहे। बाक़ाइदा हिकिड़ो साल सॼो इहो पढ़ाए ऐं सम्झाए वेंदो आहे। उन खां बाद में पेपर्स थींदा आहिनि, पेपर खां बाद में डॉक्टर्स वटि वेही क्वेश्चन आंसर थींदा आहिनि, त अव्हांखे असां हिकिड़ो केस ॾियूं था, इन केस जे बारे में असांखे सॼी हिस्ट्री ॾियो, त उन खां बाद में वञी असां पास थींदा आहियूं। ईअं यकदमि असांजो केस टेकिंग ईअं आम सब्जेक्ट कोन्हे, असांजो वॾो केस आहे, ऐं जंहिं केस टेकिंग में कमाल करे वरितो त उहा होम्योपैथिक में बि कमाल कंदो, जंहिं केस टेकिंग में कमाल न करतो ऐं उहा होम्योपैथिक में बि फेल आहे। त इन करे असांजी केस टेकिंग तमामु ख़राबु आहे, उनखे जंहिं महिल माण्हू सम्झी वियो त सम्झो हुनजे लाइ सोन आहे। त इन करे असांजी कुझु होम्योपैथिक जा तरीक़ेकार अलॻि आहिनि, त असां वटि जेॾी महिल अचो त थोरो सोचे अचिजो त इलाज जे हवाले सां।
0: सर तमामु बहितरीन। अच्छा, इलाज ते ॻाल्हि पई हले त इलाज मुताबिक़ अमां खां सवाल कयां थो त होम्योपैथिक इलाज जा कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि? सर
1: सभिनी खां पहिरीं फ़ाइदो इहो आहे त असांखे नुक़सानात कोन्हनि, साइड इफेक्ट वारी शइ असांजी होम्योपैथिक में कान्हे का, नंबर वन ॻाल्हि आहे इहा। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त असांजी जेका दवाऊं आहिनि न, मेडिसन्स आहिनि, उन में रेंज असां वटि तमामु वॾी आहे। छो वॾी आहे, उनजी वजह छा आहे त असांजी जेका रिसर्च थियल आहे उहा कंहिं डॉक्टर जे मथां थियल आहिनि, को इंसान जे मथां थियल आहिनि, को कमकार वारा उन जे मथां थियनि, कंहिं जानवरनि जे मथां असां दवाऊं खाधे इस्तेमालु करे न, ईअं कोन्हे को, इंसाननि जे मथां रिसर्च थियल आहिनि। पोइ उन में जेका बीमारियूं ज़ाहिर थियूं ऐं हू दवा खाधीसीं त बीमारी ज़ाहिर थींदी। असांजो फ़लसफ़ो इहो आहे मिसल का इलाज मिसल थिए, माना जेका दवा अव्हांखे तकलीफ़ पहुचाए पई उहा ई दवा उन तकलीफ़ खे ख़तमु ज़रूरु कंदी, मिसल जो इलाज मिसल सां। त जेका दवा असां कंहिं रिसर्च कयूं पिया त असां हू दवा ॾींदासीं तेज़ हाई डोज़ में, फुल पावर में, त पेशंट जे असां जेको अटेंडेंट हूंदो, जेको असांजो माण्हू हूंदो, उहा इस्तेमालु कंदो, पोइ चवंदो सुबुह खां वठी राति ताणी जेका हुनखे तकलीफ़ थींदी, तकलीफ़ ज़रूरु थींदी असांजी होम्योपैथिक में, उहा तकलीफ़ूं पाण वटि लिखंदो। सुभाणे उन तकलीफ़ बाबति को पेशंट अची वियो त इहा साॻी मेडिसन उनखे ॾियणी आहे, पर उते हाई डोज़ ॾिनो, इते सफ़ा घटि पावर में ॾियणी आहे, पेशंट तयारु थी पवंदो। इहो ई कमाल आहे होम्योपैथिक में, ऐं हिन में साइड इफ़ेक्ट इन वजह सां कोन्हनि खे।
0: सर तमामु बहितरीन, तमामु सुठे अंदाज़ सां तव्हां सम्झायो। सर निंड जो जेको आहे मरीज़ जी ज़िंदगी में केतिरो अहम किरदारु आहे? छा घटि निंड कंहिं वॾी बीमारी जो सबबु बणिजी सघे थी?
1: निंड जा टाइम पीरियड आहिनि, पर हींअर ज़हन में सिर्फ़ु एतिरी आहे त नंढो ॿारु आहे त उनजी 12 कलाक निंड आहे। अच्छा, ऐं जेको इंसानु आम इंसानु आहे उनजी 8 कलाक, माना नौजवान जेका आहिनि मर्द औरत, उनजी 8 कलाक निंड जो टाइम पीरियड आहे। जीअं उमिरि वॾी थींदी उहो असांखो 12 कलाक ते निंड हली पवंदी। इहा हिकिड़ी जनरल शयूं आहिनि त एतिरी देरि असां इंतज़ारु छो कयूं। अच्छा हा, इहो से तव्हांजे सवाल खां अञा सवाल ॿियो निकिरी आयो
0: जी सर,
1: तव्हांजो निंड असां छो कयूं, इहा ॻाल्हि ॾिसो न, निंड असां छो कयूं, 8 कलाक बि छो कयूं, 12 कलाक बि छो कयूं, निंड असां छो कयूं? असांजी निंड करण सां अव्हांखे इहो शइ थिए थी त असांजे जिस्म में जेका हार्मोन्स मौजूदु आहिनि उहा रिलेक्स थियनि था, ब्रेन दिमाग़ रिलेक्स थिए थो, जिस्म जा उज़वात रिलेक्स थियनि था, जिस्म जा जेका बि निज़ाम हलनि पिया उन्हनि खे रिलेक्स मिले थो, सवाइ ॿिनि जे, हिकिड़ो पंहिंजो फिफड़, ॿियो पंहिंजो दिलि, ॿ शयूं आहिनि जेको राति ॾींहुं हलंदी रहंदी हुअसि, भले माण्हू सुतो पियो हुजे या उजागल हुजे, ॿिनि शयुनि खे आराम नथो मिले, बाक़ी सभिनी शयुनि खे आराम मिले थो। आराम करण सां असांजे जिस्म खे सुकून मिले थो, सुकून मिलण खां पोइ असां इहे महसूसु कयूं था हाणे जिस्म में गुस्सा अची वियो, इन करे निंड लाज़मी आहे, पर यादि रहे 12 ऐं 8 कलाक ज़हन में हुजे।
0: सर सर तमामु बहितर सर शुगर ऐं ब्लड प्रेशर जे मरीज़नि जे लाइ आम जाम थी वई आहे अॼुकल्ह हर ॿिए माण्हू खे जेको आहे न शुगर ऐं ब्लड प्रेशर हले पई हर माण्हू स्ट्रेस जो शिकार आहे नंढे तोड़े वॾो स्ट्रेस हर माण्हू में हली रहियो आहे समय न मूंखे ॿुधाईंदो हलां त डॉक्टर साहिबु होम्योपैथिक जा मशहूरु ऐं मरूफ़ डॉक्टर आहिनि डॉक्टर साहिबु सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं हाजी इनायत क्लिनिक स्टेशन रोड सकण में मरीज़नि जो मुआइनो कंदा आहिनि डॉक्टर साहिबु माहिर अमराज़ आहिनि नक कनि गलो पुराणो नज़लो निछूं मथे जो सूरु मादे जी अल्सर मादे जी जलन तिली जो वधणु जिगर जा मर्ज़ शुगर ब्लड प्रेशर दिलि जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जो इलाज कयो वेंदो आहे मादे में जलन तिली जो वधणु जिगर जा मर्ज़ शुगर ब्लड प्रेशर दिलि जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जो इलाज कयो वेंदो आहे

डॉक्टर साहब जो मालूमती नंबर है 0327-99-84-763 बुरी 3-2-7-8-9-8-4-7-6-3।

0: शामिल डॉक्टर साहब की तरफ हलदासीं। डॉक्टर साहब का जो सवाल पूछो उन सवाल जो डॉक्टर साहब का जवाब वी तो अचो तो डॉक्टर साहब का उन शुगर ए ब्लड प्रेशर वाले सवाल के हवाले से कुछ गाल बोल क्यों डॉक्टर साहब का जवाब वूँ। सर अवा का सवाल किया तो शुगर ए ब्लड प्रेशर जो आम तौर इंसान में वही रो है उन बारे में अवजो ख्याल है।
1: अच्छा आम बीमारी शुगर ए ब्लड प्रेशर उन्हें गड अवा शुगर ब्लड प्रेशर बई शो आम
0: जी सर शुगर ए ब्लड प्रेशर
1: असो शुगर ए ब्लड प्रेशर जो थे मुझी नज़र में जो शुगर जो पेशेंट आ उन ब कैटेगरी ब कैटेगरी कियन तो एक पेशेंट यो है तो उनकी सारी जिंदगी में मादे की तकलीफ हुए मादे से गैस वगैरह थे तो यह तकलीफ उनके है तो उनकी लब लबो जरूर खराब थी सके तो यह आम गाल आम पेशेंट में जी शुगर थे उनकी वजूहत ये थी सके थी मेडिसन्स जो इस्तेमाल घड़ो कर लब लबे के नुकसान थी सके तो बाकी जो है जेनेटिक्स प्रॉब्लम उन्हें में लब लबो खराब थी सके तो पैदाइशी लब लबो कम न भी कह कें कंजो तो यहाँ शूँ जेनेटिक्स पुरानी बीमारी में अच्छी पर जो शुगर थेण वाली उनकी वजह असो मायदे की खराबी दवा जो बे इंतहा इस्तेमाल उन शुगर थी सके आम शा जनरल शे उ बाकी अना भी गाल जरूर आज जैसे कर शुगर थी सके थी पर जो थुली थुली गाल मोटी मोटी गाल जैसे कर शुगर थे। अच्छा ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर भी ये जेनेटिक्स वन तो खानदान में ये ब्लड प्रेशर वो इशू थी सके तो खास करे हार्ट अटैक दिल जो दौरो पैण यो भी खानदान में थो है तो वो अगत यह शे जरूर थी बाकी ब्लड प्रेशर थन असि गलतियों मादे से गैस भर्ती और घो सणप जो इस्तेमाल थन उनके अलावा निंड जो घट थन चिड़ कावड़ सुस्ती यह सब शूँ ब्लड प्रेशर के चवंद अच तो अस तो रस्तों दूँ यह शूँ आम तो इन शा पा कोशिश कर लूण जो इस्तेमाल जो उनके नॉर्मल रखो तो जैसा अवं के ब्लड प्रेशर जो इशू न थी। अच्छा मुझी नज़र में एक मेन शे बुदा तो जैमें अवं शुगर ब्लड प्रेशर हर तकलीफन का अवं बची सको था तो वह शे है तो अवं पे रूटीन जो लाइफ जो जिंदगी उनके थोड़ा चेंज कर वह चेंज में मुराद यो ना तो मटा कर बे पास दई छो बे जी खड़ो न इन जो मुराद यो है जिंदगी गुजारण जो जो तरीकेकार उनमें अवं दिसो तो कड़ी शे अस अड़ी इस्तेमाल क्यों पे जैसे कर बीमार थूँ पाड़ी बीमारी जो इलाज कर महीनों डेढ़ सही रहूँ था वही तकलीफ थे थी या एक साल गर्मी लगी तो मथे साल वही गर्मी लगे पी साल साल में अस ट्रिपू थे लगन पा वजह छा पहले इन शे के तुम थोड़ा ढीसी कर लाइफ है रूटीन है उनको थोड़ा चेंज कद न अवं की जो जिंदगी है वह डॉक्टर का बची पवी
0: समी लाइव कॉल की तरफ हलूँ केर अस गन असलम वालेकुम साई केर किथा का
2: हेलो सलाम वालेकुम
0: साई वालेकुम असलम केर किथा का गल आया जी अदा पुछण चाहिए डॉक्टर साहब का
2: डॉक्टर करे ट्रोरी दवा उठे में छोकरो जाम जाम ही खास के खंगरी दवा उठे में ट्रोरी छन छड़ जदी
0: जी जी साईं
2: दवा फायदो जरूर कोन रहा दिखा के छोकर के वधी भैया
0: साईं डॉक्टर साहब आ जी गाल बुदन पे डॉक्टर साहब आ के एफएम जे थ्रू जवाब जन था जी सर। सर भाऊ जो सवाल हो तो ब टे दी पेरावा का खंगरी दवा वठी आसी ने में फर्क ना आयो है
1: सही उनमें परेशान थे गाल ही कान्ने का छोता परेशान थो अवं परचो पेशेंट दवाओं खी वापसी अची वो असंदूँ तो जे दवा में कमी आ तो अलहमदुल्ला दवा में तो कमी न होंगी खाधो खुराक की तुम एहतियात कराइंद चावर लस्सी समोसा पकौड़ा देगार चावर थदो पानी इं शूँ ींद तो कितना भी दवा वो टके फायद न परहेज तो लाजमी आ नो दवा जो खेण पीने तरीक़ेकार इस्तेमाल के उन तरीके से अल्लाह जरूर शिफा दी दिसो कोशिश सा ही हर शे आहे खाली बीमारी न दुनिया जो जो भी कम कोशिश कंदा हो तो वो कम थी सके तो वेठे वेठे बस पांजे पान थी दो, तो ये कदे भी नथो थी सके लाजमी आ तो मुट आया खंग की दवा वठण ला तो मु खंग की ही दवा दिनी होंगी को पेट की सूर की दवा तो मुँह ना ही दिनी होंगी खंग होंगी तो खंग की दवा मुँह दिनी होंगी उनमें लाजमी है अवा जो जो दवा जो तरीक़ेकार अगते थी वे हो या अवं जेका दवा इस्तेमाल कयो पिया उनमें परहेज न पिया कयो खोड़ शयूं आहिनि लाज़मी न आहे त डॉक्टर ते आंगुर खणी आहे इहा शइ यादि रखो डॉक्टर ते आंगुर नथा खणी सघो तव्हां डॉक्टर उन शे में तवा सा बदल आ ता अवा आयो खंग जेला ए डॉक्टर री शे पेट में सूर जेला अवा डॉक्टर के चई सको था खंग लायो खंग जी दवा मिली आ डॉक्टर जो कसूर कोने को इन में अवा जी गलती जरूर होंदी त उ शो जरूर दिसो ये एफएम ते कॉल करे चई त को तारीफ कोने असा इन शे में खुश थिंदा तो को पेशेंट चे असा जे खिलाफ चंदो असा ढरा खुश थिंदा तो वडन जो चवण यो या त जेको ताजे तारीफ करे नेकी करे ओ ताजे ला कम जी आही कोन जेको तवा जा एकड़ो मानु बुरा करे ना बाबा ही डॉक्टर कोने गो सही कोने फलाण यो ताजे ला कम जो आ सो त इया छे अवा जे ला बेहतर आ ओ छे तारीफ त ला केतरी थिंदु रहंदो जेको बुराई कंदो आ ओ ताजे ला बेहतर आ बेफिकर थयो असा के को टेंशन काने का हा दवा में इया छे हुंदी मा अवा सब बदला बाकी कोशिश कयो दवा दिसो अवा तरीके कार सा खरायो अवा के तरीके कार समझ में ना आयो हुंदो छो त असा जी होम्योपैथिक आई अवा के एलोपैथिक जगह मेडिसन उनकी हेयर पेल आ सिर्फ जब चमचा पीड़ान बस गोरी पानी से खाने अस होम्योपैथिक में दवा खाने तरीके का कुछ अलग आ तो जैसे करे कुछ पेशेंट के दवा क्लिनिक में समझ में अची घर पौता दवा खोले सही अड़े ये कें खानी विसरी हुई तो वो पाँच अंदाजे से बस ये खाई वा तो यह शूं भी कुछ जाहिर सी गाल कुछ शूं सही तो इन भी तुम थोड़ा ख्याल कर
0: डॉक्टर साहब तमाम सुठे सादे अंदाज सा डॉक्टर कॉलर के समझाओ तवाजी गाल तवाजे वसी तजुर्बे मरीज से मोहब्बत जो अंदाज थे तो तवाजल मालूमत न रुगो मुफेद है पर रोजाना जिंदगी में अमल करण जड़ी भी है डॉक्टर साहब तवाजे शोबे सेहत के शोबे में जहाँ खिदमत सरंजाम दे रहा आयो वह सारा जोगी है बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब अमा का सवाल जो इन कॉलर का पैर वो यो तो कुवत मुदाफियत बधाने जरा कड़ा तरीका कुदरती है कुवत मुदाफियत बधाने जरा कुदरती कड़ा तरीका है सर
1: कुवत मुदाफत सभी का पहले यह शे समझनी पवी तो यह कुवत मुदाफत है तो यह अवां जो वर्ड इस्तेमाल किया है यह खालिस उर्दू आ
0: जी सर
1: खालिस उर्दू इन कुवत मुदाफत आम जबान में उर्दू में चवंदा कुवत हयात या अंग्रेज में चवंदा वाइटल फोर्स इम्यूनिटी
0: यह
1: वर्ड्स आम अफान में इस्तेमाल थी असानी जबान में ताकत असान अल्फाज ताकत समझी वह होंद कुत मुदाफत आसान अल्फाज में ताकत ताकत किए वधाबी खाधे खुराक से वधाबी हलो ठीक है खाधो खुराक तो असं खाऊँ पा रोज बुख से को वे छो अच्छा इतने छो जो वर्ड है ना वो समझण पव कुत मुदाफत वधाइण जे ला सिर्फ खाधो खुराक रोजानो छेले जो गोश्त खाओ तीतर खाओ बटेर खाओ पाटे जो गोश्त खाओ न इं कोन वधंदी ताकत वधाणी है अवां दाल खाओ चावर खाइंदा इन्हें सा वो वधी सके थी बटालू त बोड़ करे खाइंदा उन्हें सा वो वधंदी वजह छ है असां जो जेको एरियो आ ना जेको असां सराउंडिंग जे थी मुझे एफएम हले पियो ये सो जो मुझे एरियो आ तो मां एफएम ते वेही इन सबनिन के समझाया पियो त ही मुझे डॉक्टरी में मुझे एरियो थी वियो मुझे फर्ज आ इन सजे एरिया में कड़ी कड़ी मेन मेन शेवन कें गोठ में कड़ी बीमारी है कड़े गोठ में कड़ी बीमारी है तो उनके उन बीमारियों का बचाव एहतियात समझाया वे तो उन हवाले से तो जो बीमारी असाज इन अराउंड में आ तो वहा है अस खाधो खुराक खाऊँ था अल्लाह जो शुक्र है जो मिले तो बिस्मिल्लाह कर अस खाऊँ था पर अस उन सही नमूने से हजम न पाया क्यों हजम से मुराद यो आ खाधोसी मथा पानी चाह खट से सुता प्यूँ कम कार पो हाँ ता मानी खाधी है कुछ आराम क्यों तो इतने जी शे नो अवे तमाम घो नुकसान आता ही तुम पाँ पान के पान नुकसान पान दियो पा छो तो खाधो अवा खाधो आ ना ऐसो पे हाँ मंझंद जो टाइम पा एज ए डॉक्टर थी अवे बुधा पो तो मंझंद की जो मुझी मानी है ना वह सफा हल्की मानी है जिथे मैं ब मानी खाइंदा उतने मानी खाइंदा मंझंद जो वजह छा है पेट से मानी घट हूँ तो गर्मी में कम कार कर अचन वन मरीजन से वेही कचेरियों कर में सवलाई थे थी वो तो असो कम है कुर्सी से वेहन सुबह नवे का वी शाम छह ती कुर्सी से वेठो आ हलण फिर मुझे आ ही को हाँ मुझे खाधो पीतो हजम कें वेठे थोड़ी हजम खाधो पीतो हजम हलणो पव असा कह सुबह जो जी नाश्तो क्यों वॉक बंद कह रात जो हाँ एफ एम का वही अस घर पोचंदास मानी खाए वॉक क्यों वॉक करना जो अस खाधो खुराक खाऊँ पा वह हजम थे पी हजम थी असम में लगन जै हजम न कंदी जी मथा खाधो हेठा करे सुध बस गाल या थी वो इन हिसाब से अवां के कदे भी वाइटल फोर्स जो मानू अबरा वह थुला कदे भी कोन थी सकंदा वजह यो है तो खाधो खुराक हजम थे ही न पियो हजम थे तो अवां के जिसमें ताकत मिले उनमें जो मल्टी विटामिन्स मिनरल्स जेका भी शयन वह असा आंड्रा उन्होंने छिके कदी जिगर के दियन तो जिगर उन्होंने संभाले ए जिसम में जिथे जरूरत है होदा लगाए तो असि वाइटल फोर्स स्ट्रांग अस हर चे टाइट उनके अलावा असें कें बीमारी के हवा से दवा वठण की भी जरूरत कोने को सब शूँ इन तरीके से जरूर है
0: सर तमाम बेहतरीन सुठे अंदाज से अवा समझा सर सवाल वरी अवा का पुछदस त खाधे पीते जो गलत आदतों भी बीमारियों के वो सबब बण रही अजकल हिंसर जो खाधा मसाले वा हली रहा है अक्सर होटल जा खाधा
1: होटल जा देगवारा
0: जी जी बिल्कुल
1: असल में देगवारा समोसा पकोड़ा पेटिस बर्गर शुआरमो पिज्जा फिंगर फ्राइज सब शो मिलाए छो न चा भी मिलाए
0: जी सर सब शो मिलाए
1: अजा का शे मुझे हिसाब में रहा सभी शूँ मिलाए छद हाँ मुझे हिसाब में प्रोग्राम का पोई सभी जहाँ देग वारा चावर वारा समोसा पकोड़ा बर्गर वारा अवा सभी तुम नादिर के वो अवज दुश्मन यो तीन ग्राहकी खराब करे पो अ दुश्मन नादिर
0: सर
1: दुश्मन नादिर है ना सभी बाबा डॉक्टर के चाहिए इन शन का झल
0: न सर मैं झलिया नो तो लिसनर्स की आगाही के लिए तुम्हें सवाल किया जी उन्होंने खबर पे तो खाण वाली शूं कड़ी सुठी कड़ी खराब
1: अस खाण वाली शूं तो जो घर में पचे पी उ सुठी आ
0: जी सर
1: जो बाहर है ना वह फिलहाल सुठी कान्ने का इन टाइम से सुठी को
0: इस्तेमाल
1: कर मिनट वह इस्तेमाल कर लाजमी ना तक बिल्कुल बंद करनी है पर लिमिट में उनके इस्तेमाल कजो आउट न वनजोस
0: सर बस हाँ मां सवाल पूछण वो अवा जवाब दई मुख्य जो लाजवाब कर अच्छा सर जहनी सुकून जिस्मानी सेहत से को तालुक है इन जो
1: जहनी सुकून जिस्मानी सेहत
0: जी सर
1: अवा पा सोचो ना दिसो जेडी मल अवां जो जहन सुकून में होंद अवां कम कार उथण वेहण गल हर शे में ई अंदाज से गल सामू अच्छा यार वाह जो मानू आ जेडी मल अवां जो जहन फ्रेश न होंद अवां के या गाल समझ में नी तो सामू वाले के मां जवाब दियां तो मां छा जवाब दियां केडी मल तवां तेज थी वेंदो तो केडी मल तवां स्लो थी वेंदो तो इया शूं जरूर आन तो जहनी सुकून सा अवां जी लाइफ में इया फायदो थी सके तो इनमें लाजमी ना है घर में मुझे हिसाब में जगह छे ना मेन छे घर में जगह जेड़ा भी थींदा आन उन जी सबनी का वडी वडी वजह इया भी आए तो जहनी सुकून काने का जहन में सुकून अचे तो घर में भी सुकून थी अवां जे या का थोड़ी का गाल थी वही उनमें तवां तेज थी वेंदो वजह कुछ कोने को ये कोने मानू जे जहन में या तो जादू आ नजर आ ये फलाने शे कुछ शूँ पांजी पान में भी जरूर होती हुन तो उन शन के भी ख्याल कर सामू वाले चे पे हाँ वाह ठीक आ खास कर जो मुझा जी अदियों जैसी शादी थी वही

0: वो डॉक्टरी फील्ड में अचे थी। उनकी वजह छा है त ज़हनी सुकून कोने असां जिस्म में बुखार मैदे की खराबी ब्लड प्रेशर मथे में सूर यह सब शूं अची वन जेदी मल मां केस टेकिंग कंदो आ पुछंदो आ वा छा थियो छा थियो कुछ ही कोने को पो आखिर में गालिया थिंदी आ त इनके निंड जी गोरी देनी आ सुमे सुबह जो फर्स्ट क्लास फ्रेश त यह शूं आहिन।
1: समय अज जी इन खूबसूरत कचहरी दौरान अवां सेहत बाबत के कीमती गालियों ए मुफीद सलाहूं दिनियो आइन से यकीनन असांजे बुधनन लाए वडी अहमियत रखन थियूं। अवां जो अंदाज बयान निहायत सादो ए दिल नशी ए समझण जेड़ो आहे जे करे हर उमर जो मानू आसानी सा फायदो हासिल करे सके थो। सेहत जे शोबे में अवां जी खिदमतूं ए अवां जो वसी तजुर्बो सारा जोगो आए असा के तरफा अवा के दिल की गहराइन से भलीकार ए मेहरबानी जो अवा पांजो कीमती वक्त कड़ी अस प्रोग्राम में शरीक थे। डॉक्टर साहब अवा जी शख्सियत इल्म तजुर्बे ए इंसानियत से भरपूर आए अज अवा जेको मालूमात असा सा वंडी आए उवे न रुगो बीमारियों का बचाव लाए कराई थी आहिन पर एक सेहतमंद जिंदगी गुजारण जो रस्तो भी ॾेखारिन थियूं। असां खे ख़ुशी आहे त जवां जहिड़े क़ाबिल ऐं तजुर्बेकार डॉक्टर सां वेही ॻाल्हाइण जो मौक़ो मिलियो आहे। सर मां खां सवाल कंदो हलां त औरतुनि जी सिहत बाबति अहिड़ो कहिड़ो मसइलो आहे जंहिंखे डॉक्टर अक्सर करे नज़रअंदाज़ करे छॾींदा आहिनि औरतुनि जी सिहत बाबति। सर सर मुंहिंजो सवाल अवां खां इहो आहे त
0: अनकम्प्लीट
1: औरत जी सिहत बाबति अहिड़ो कहिड़ो मसलो आहे जेको अक्सर करे हर डॉक्टर नज़रअंदाज़ करे छॾींदो आहे।
0: सवाल अव्हांजो बिल्कुलु ठीकु आहे पर इन में कुझु शयूं मिसिंग आहिनि जंहिंखे मां एड करे अव्हां जे सवाल खे अञा वॾो थो कयां।
1: जी सर जी
0: छो त अञा प्रोग्राम में असां वटि टाइम पियो आहे त सवाल खे थोरो वॾो करे जंहिंसां ॿुधण वारा बि सम्झी वञनि त हा इहा शयूं हूंदियूं आहिनि यार इहा शइ बि हूंदियूं आहिनि त सवाल ईअं कयूं अव्हां जे सवाल खे वधायूं त औरतुनि में कहिड़ी अहिड़ी बीमारियूं आहिनि जंहिंखे असां डॉक्टर्स ॾिसी करे चवंदा त यार इन जो इलाज असां न कंदासीं इन खे छॾे ॾियोसि पाणे तयारु थी पवंदी जस्ट इहो
1: जी सर
0: उन में आहे
1: नज़रअंदाज़ करणु
0: नज़रअंदाज़ करणु उन में का बि अहिड़े क़िस्म जी बीमारी कोन्हे औरत में जेका असां नज़रअंदाज़ कयूं सिर्फ़ु एतिरी आहे त घर में जेको जहिड़ो करे बि उहा असां नज़रअंदाज़ कंदा आहियूं। असल में ॾिसो औरत में जेका बीमारियूं आहिनि माइतो खंघि रत जो कमी ऐं जेका उहा मेंस जेका आहिनि माहवारी उन जी कमी चेल में सूर हीअ सभु जेका शयूं आहिनि न उहा लाज़मी आहे उन्हनि जो इलाजु करणु ऐं ख़ासि करे कैल्शियम जी कमी। जी हाँ कैल्शियम की कमी के अवां जरूर जहन में रखंदा कयो जेका बुधन पिया घरवारा मुझे प्रोग्राम बुधंदा तो उन्हें मां सिंपल वर्ड्स में समझाया जा अवां जी जिस्म में जेका हड्डियों हड्डां जेका उन्हें में कमी थी वही कें थी वही तो जैजा शादी थी वही शादी थियण का बार पैदा थियन था एक ब टे जितरा ला दिन उन्होंने तो बार पैदा थो जिस्म में जेका भी निमकियात हुआ जेका भी विटामिन्स हुआ वह सब बार के मिली वह हाणे डिलीवरी थी वई उन खां बाद में कमी थी वई पोइ खीर माण्हू पीआरनि थी त उन में कैल्शियम जिस्म मां निकिरे थो हाणे हिकिड़ो ॿार आहे ॿ ॿारनि टे ॿारनि सभिनि खे खीर पीआरे थो जिस्म में कैल्शियम जी कमी थी वञे उन टाइम ते अव्हांखे लाज़मी इन शइ जो ख़्यालु कयो त खीर केलो इन शइ खे ज़रूरु इस्तेमालु कयो त जिस्म में कैल्शियम जी कमी न थिए छो त अॻियां जेका दौर ईंदा न अॻियां जीअं तव्हांजी एज उमिरि 45 साल जी जेका उमिरि थींदी उन में पोइ आहिस्ते आहिस्ते अव्हांजा जेका जोड़नि में सूर तकलीफ़ पैदा थियणु शुरू थी वेंदियूं ऐं उनजी वजह इहो ई थींदी त कैल्शियम जी कमी। कैल्शियम जी कमी 45 साल खां पोइ असां का बि मेडिसन ॾींदासीं कैल्शियम वधाइण जे लाइ उहा तक़रीबन 50% कमु कंदी 50% कमु न कंदी उनजी वजह उमिरि वॾी थी वई आहे एब्ज़ॉर्वेशन जेका हज़म करण वारी शइ आहे उहा घटि थी वई आहे त कैल्शियम जी दवाऊं जेको 10 ॾींहं दवाऊं खाराइणियूं उहा असांखे महीनो खाराइणी पवंदी पोइ वञी महसूसु थींदो त उन जे लाइ अव्हां जेका हींअर उमिरि आहे एज आहे उन में अव्हां कैल्शियम जे लाइ लाज़मी न आहे दवाऊं मुंहिंजी कोशिशि इहा रहंदी आहे त पेशेंट खे दवा सां गॾु गॾु कुझु अहिड़ी शयूं ॿुधायूं त उहा इस्तेमालु करनि त दवाउनि जो जेको आहे न खाधो ख़ुराक उहो बंदि थिए त जेतिरो घटि थी

0: ਸਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਵਾਓਂ ਖਾਏ। ਬਾਕੀ ਆ ਬਦਾਮ, ਪਿਸਤਾ, ਕਾਜੂ, ਅਖਰੋਟ, ਚਿਲਗੋਜ਼ਾ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮਗਜ਼ ਛੁਆਰਾ, ਅੰਜੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਯੁਨਿ ਜੀ ਤਰਫ਼ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਚੇ। ਛੋ ਤ ਇਹਾ ਅਹਿੜੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜੇਕਰ ਜਿਸਮ ਮੇ ਵਨੇ ਥੀ ਐਂ ਜਿਸਮ ਮੇ ਕਮਾਲ ਥੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਨ ਮੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਆ, ਉਨ ਮੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕੋ ਅਵਾਂ ਕੇ ਮਾਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਸ਼ਯੂੰ ਬੁਧਾਇੰਦੋ ਹਲਾਂ, ਜੇਕੋ ਅਵਾਂ ਕਯੋ ਐਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਤਵਾਂ ਕਰੇ ਸਕੋ, ਓਤਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਵਾਂ ਕੇ ਬੁਧਾਇੰਦੁਸ, ਵਧੀਕ ਡਾਕਟਰੀ ਅਵਾਂ ਕੇ ਨਾ ਬੁਧਾਇੰਦੁਸ। ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਆਨ ਜੇਕਾ ਅਸਾਂਜੀ ਔਰਤੂ ਆਨ, ਲੇਡੀਜ਼ ਆਨ, ਖਾਸ ਕਰੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਤ ਜੋ ਘਟ ਅਚਣ, ਮਨਾ ਰਤ ਜੀ ਕਮੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਅਵਾਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਰਾਤ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬੁਸਾਏ ਰੱਖੋ, 5 ਦਾਣਾ 6 ਦਾਣਾ ਸੁਬੁਹ ਜੀ ਉਥੋਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਅਵਾਂ ਖਾਏ ਵਠੋ, ਰਤ ਅਵਾਂ ਜੀ ਸਮੇਂ ਪੂਰੋ ਥਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਵਿੰਦੋ। ਕਾ ਦਵਾ ਖਾਣ ਜੀ, ਕਾ ਗੋਰੀ ਖਾਣ ਜੀ, ਰਤ ਵਧਣ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਾਨੇ, ਕਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪੂਰਾ ਥੀ ਵਿੰਦਾ। ਐਂ ਉਨ ਖਾਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਡੀ ਮਹਿਲ ਦਿਸੋ ਪਿਆ ਮੱਥੇ ਮੇਂ ਸੂਰ ਦਰਦ ਥੇ ਪਿਓ, ਮੱਥੇ ਮੇਂ ਸੂਰ ਦਰਦ ਥੇ ਪਿਓ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਦਿਮਾਗ ਮੇਂ, ਬਦਾਮ ਐਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਬਈ ਰਾਤ ਜੋ ਪਸਾਏ ਰੱਖੋ, ਸੁਬੁਹ ਜੋ ਖਾਏ ਵਠੋ, इन सा अवा के दवाओं से बची वो जिसम में यह ताकत अची वी पाँ पान सैटिंग थी पवी। उन अलावा जेडी मेल दिसो पे हड्डन में सूर थे पो, जड़न में सूर थे पो, तो चार मगज़ के नाल विज हूँ वह इस्तेमाल कर सोता कैल्शियम अवा जिसम में थी वो, खीर वो इस्तेमाल कर सोता, केलो आ वो इस्तेमाल कर कैल्शियम थी वो। बाकी जेका रगन में सूर, जोड़न में रगन में सूर थे तो, मांस में सूर थे तो, ये महसूस थे तो जी टंगू हथ पेर ईअं छिकजी था हुजनि, आंगुरियूं या पंहिंजे पाण ईअं फिरी थी वञनि, इहो छा आहे? रगन जी कमज़ोरी, मांस जी कमज़ोरी, उज़लातनि गोश्त आहे उन में कमज़ोरी आहे, उन जी कमज़ोरी, यानी कि ईअं सम्झो जिस्मानी कमज़ोरी। इन में सभिनी खां वॾे में वॾी शइ जेका आहे उहा आहे पिस्ता। पिस्ता जेको आहे उहा पसारी खां मिलंदो, पठाणनि खां मिलंदो, ॿधाणा सुबुह, ॿधाणा शाम, ॿधाणा सुबुह, ॿधाणा शाम, जेका जेतिरी जेतिरी क्वांटिटी मां अव्हांखे ॿुधायां पियो, सिर्फ़ु एतिरी अव्हांखे इस्तेमालु करणी आहे, इन खां वधीक ते न वञो, छो त जेतिरो ॾींहुं अवां इस्तेमालु कंदव उहो अव्हांजे लाइ फ़ाइदो आहे, या हिकिड़ो ॾींहुं में खाईंदव उहो तव्हांजे लाइ नुक़सानु आहे। अवां हफ़्तो खायो, ॿ हफ़्ता खाओ, इहो फ़ाइदो आहे, भले हिकिड़ो दाणो खाओ पर हफ़्तो ॾेढु खाओ, उन सां फ़ाइदो थींदो, हिकिड़े दाइम खाइण सां को फ़ाइदो न थींदो। त इन तकलीफ़ुनि में अवां पिस्तो खाए सघो था, ऐं उन खां अलावा अंजीर आहे उहो खाए सघो था, अखरोट आहे उहो खाए सघो था, इन सां जिस्म में ताक़त ईंदी, का कोरी ताक़त जी वठण जी ज़रूरत न पवंदी।
1: सर तमामु बहितरीन, अवां सवाल जे काफ़ी जवाब जे काफ़ी जड़ ताईं वञी असांजे सामान खे जेको आहे काफ़ी गहराई सां सम्झाए था। सर शुगर जी शुरूआती अलामतुनि खे कीअं सुञाणे थो सघिजे, त जीअं ख़बर पए अॻे इंसान में त हाणे शुगर जेको आहे जनम वठी रही आहे?
0: असल में नज़र शुगर ऐं हेपाटाइटिस सी
1: जी सर
0: ॿ बीमारियूं अहिड़ियूं आहिनि त जिस जीअं कोन थींदा आहिनि कच्छ में नाग छा चवंदा आहियूं, नाग कीअं छा चवंदो
1: सर? इहे हाणे पाक आहे त कंहिं वॾे माण्हू खे ॿुधा हूंदा।
0: अरे बाबा इहे नाग हूंदा आहिनि न, छा चवंदा आहिनि अलाए, छा चवंदा आहिनि मूंखे ज़हन में न पियो अचे।
1: बला चवंदा आहिनि सर, बला।
0: उर्दू में त चवंदा आहिनि आस्तीन में सांप चवंदा आहियूं, त माना तव्हां इहे अंदर में माना वेठो आहे नाग वेठो आहे। त कारीसाई ऐं शुगर ॿ शयूं साॻी ॻाल्हि आहे, जेसि ताणी का धक नथो लॻे, जिस्म मां रत ज़ाया नथो थिए, ख़बर ई न पवंदी त शुगर आहे साई आहे, ख़बर ई न पवंदी। असल में असां अव्हांजे सम्झाइण जे लाइ साई जे लाइ ऐं शुगर जे लाइ जेका हिकिड़ी सिम्पटम आहे जेको आम माण्हू बि सम्झी सघे थो, उहा इहा ई आहे त जिस्म जो वज़न जो घटि थियणु, हफ़्ते में घटि किलो ॾेढु ख़तमु थी पवंदो, जे शुगर आहे त साई आहे, किलो ख़तमु थी वेंदो वज़न। ऐं बाक़ाइदा माण्हू जेॾी महिल ॾिसे थो कपिड़ा पाए थो या ॿिया माण्हू ॾिसनि था चवंदा अबरो थी वियो लही वए, त उन टाइम ते अव्हांखे बसि साई ऐं शुगर चेस्ट कराइणी आहे। जे ॿिन्हिनि में का बीमारी आहे त ठीकु आहे, न आहे त पोइ खाधे खुराक जी तरफ़ तव्हांखे कोशिशि करणी आहे। न्यूट्रिशन जी कमी जे करे बि वज़न घटि थिए थो, लाज़मी न आहे त शुगर ऐं साई में थिए।
1: सर मैदे जी बीमारियूं में तेज़ी सां जेका वाध अची पई, उन जा कहिड़ा सबबु आहिनि?
0: माना मैदे जी बीमारियूं तमामु घणी थी वियूं आहिनि।
1: जी जी सर, उन्हनि में ओचितो हर माण्हू जेको आहे उहो वधे पियो,
0: खाधो खुराक सही कोन्हे को, रुटीन असांजी सही कोन्हे का, जेका शइ असांजे लाइ नुक़सानदेह असां सभिनी खां पहिरीं उहा खाईंदा आहियूं, जेको फ़ाइदेमंद आहे उहो असां न खाईंदा आहियूं। ख़ासि करे जीअं ॾिसो खीर जेको आहे असांजे काढ़े इस्तेमालु कयूं, असांजे मैदे में गरमाइश, आंडरनि में गरमाइश, एतिरे क़दुरु मां तव्हांखे खीर जी ॻाल्हि चवां त अव्हांखे सम्झण जे लाइ खीर काढ़े पाण वटि रखो, थधो माना एतिरो जो पी सघो एतिरो गरम। अव्हां हिकिड़ी मिर्च, ॻाढ़ी मिर्च, साई बि न खणो, साई हल्की हूंदी आहे, ॻाढ़ी मिर्च तेज़ हूंदी आहे, उहा तव्हां वात में रखी खाओ। अव्हां जो वात छा थींदो, सड़ंदो न, सड़ंदो सड़ंदो माना सड़ी वियो वात मिर्च खाए, उन टाइम ते अव्हां जे खीर पवंदव न, तव्हांजो वात ऑटोमेटिक सही थी वेंदो। पाणी पवंदव न थींदो, जूस पीअंदव न थींदो, खीर पीअंदव न, अव्हांजो वात सही थी वेंदो। इन सां छा थियो मुराद, त गरमाइश जेका वात में थी खीर पीअण सां उहा ख़तमु थी वई। जेका मैदे में गरमाइश आहे उनखे ख़तमु करण जे लाइ बि असां खीर इस्तेमालु करे सघूं था न। असांजा जेका दोस्त आहिनि उहा इहा शइ ते ग़ौर कनि था कनि, चांहि ते वठि वठा आहे, ऐं चांहि जो पीअण जो जेको असांजो तरीक़ेकार आहे न उहा बि तमामु घणो ख़राबु आहे। असां वटि डॉक्टर कुरेशी आहे, सभिनी खे सुञाणंदा हूंदा, डॉक्टर साधुला कुरेशी, उहा दवा ॾिए थो गॾु चए थो चांहि न पी अचो, हुनजी रख ई आई आहे। साईं चांहि पीअण जो तरीक़ेकार, पहिरीं पाणी पाणी जो इस्तेमालु कयो, गिलास पाणी पी वरितो, पोइ तव्हां चांहि पी वठो। छो त चांहि असां अॼु वन कंदासीं त सम्झो असां सिंध में कोन, असां पंजाब में रहूं था।
1: सर तमामु बहितरीन। सर असां चवंदा आहियूं त बाबा कंहिंजो वज़न वधे थो त सम्झो उन में का बीमारी जनम वठी रही आहे। मोटापो ॿियनि बीमारियुनि खे बि जनम ॾींदो आहे सर?
0: मोटापो, मोटापो, अच्छा मोटापे सां हिकिड़ी बीमारी कोन्हे का। मोटापो सभिनी खां पहिरीं मोटापो थींदो छो?
1: जी सर।
0: उन जे तरफ़ हलूं था पोइ वरी मोटापे जे करे जेका तकलीफ़ूं थींदियूं उन तरफ़ ईंदासीं। मोटापो थियण जी वजह इहा आहे त असां खाधो खुराक खाधोसीं, ख़ासि करे फ्राई थियल चिप्स, इहे जेका आलू वारा चिप्स हूंदा आहिनि उहा वज़न वधाईंदा आहिनि, ऐं तरल जेका शयूं हूंदियूं आहिनि उहा वज़न वधाईंदियूं आहिनि, चांवर आहिनि उहा वज़न वधाईंदा आहिनि। असां खाधोसीं मथां पाणी पी छॾी, उहा हज़म थिए ई कोन। ऐं उन खां अलावा असां वेठा आहियूं घर में, ऐं ख़ासि करे नंढा ॿार जंहिं ॾिठा हूंदा त टीवी हलाए पियो होॾां वेठो आहे, चिप्स खाए पियो वेठो आहे, जूस पीए पियो वेठो आहे, मानी खाए, उन आहिस्ते आहिस्ते जिस्म थुलो थियणु शुरू थींदो, मोटापो थियणु शुरू थी वेंदो। असल में असांजी जेका फील्ड आहे, डॉक्टरी फील्ड आहे, उनमें असांखे इहो सम्झायो वेंदो आहे त असांखे डेली वाइज जेतिरी असांखे मल्टीविटामिन जी नीड आहे असांखे ओतिरो खाधो खुराक इस्तेमालु करिणो आहे। जे असां उन खां वधीक कयूं था त उन में कमु किरदारु ईंदो आहे असांजे जिगर जो, लीवर जो। उहो छा कंदो आहे त उन्हनि सभिनी शयुनि खे, जीअं असां अॼु कमु घणो कयो, अॼु कमु असांजो सफ़ा घटि कयो, मानी असां ओतिरी खाधी, जंहिं ॾींहुं असां मानी, जंहिं ॾींहुं असां कमु घणो कयोसीं, असांजे जिस्म में मौजूदु जेका फेट आहे, चर्बी आहे, उहा जिगर छा कंदो, उनखे रीस्टोर कंदो एनर्जीअ में, ताक़त में, त असांजे जिस्म में चर्बी थियणु ख़तमु थी वेंदी। ऐं जंहिंमहिल असां कमकार न कंदासीं त जिगर छा कंदो, जेका शइ ताक़त बची वई आहे उनखे चर्बीअ जी सूरत में जिस्म में जमा कंदो, माना चर्बी घटि थियणु, वधीक थियण जी वजूहात इहा थी वई आहे। हाणे अवां पाण हिकिड़ी शइ यादि कयो हूंदो त जेका बि थुला माण्हू हूंदा आहिनि उनखे डॉक्टर छा चवंदा आहिनि, मानी घटि खा ऐं पंधु कर, वॉक कर, एक्सरसाइज़ कर, यानी कि पंहिंजे कमकार खे वधा, जंहिंसां जिस्म में जेका चर्बी आहे उहा गरणु शुरू थी पवंदी। हिकिड़े सम्झाइण जे हिसाब सां इहा ॻाल्हि थी वई। हाणे बीमारी थुलो थियण खां बीमारी, बीमारी सभिनि खां पहिरीं हार्ट, दिलि, फेट, हार्ट अटैक, दिलि जी जेका रगूं आहिनि उन में सणप जो जमा थी वञनि, हार्ट अटैक, बाईपास, एंजियोग्राफी, सभु ॻाल्हियूं इन जे करे थींदियूं आहिनि। ऐं उनखे अलावा थुलो थियणु, उन में हार्मोन्स जो डिसबैलेंस थियणु थुलो थी सघे थो माण्हू। ऐं उन खां अलावा जे माण्हू थुलो थी वियो आहे त उनखे जोड़नि में, संदनि में सूरु ज़रूरु थी सघे थो। इहे थुलो थियण जी कुझु वजूहातूं हुयूं ऐं थुलो थियण जे करे बीमारियूं जी वजूहात हुयूं।
1: अच्छा सर, आख़िरी सवाल अव्हां खां पुछंदसि त अहिड़ियूं कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि जेके शुरूआत में बग़ैर अलामतुनि जो ज़ाहिर थींदियूं आहिनि, बाद में हली करे कंहिं वॾी बीमारी जो सबबु बणजंदियूं आहिनि?
0: अहिड़ी बीमारियूं जंहिंखे महसूस माण्हू नथो करे,
1: इंसान महसूस न करे त मूं मुंहिंजे जिस्म में का चेंजिंग अचे थी, का तब्दीली आई आहे,
0: ठीकु आहे, ऐं पोइ आईंदड़ दौड़ में ख़बर पवंदी आहे यार हा इहा त तकलीफ़ हुई। इन में सभिनी खां पहिरीं वॾी वॾी आहे मोदे जो बुखारु, टाइफाइड, ख़बर न पवंदी आहे माण्हू फस्ट क्लास हूंदो आहे, शाम जो बुखारु थींदो त महसूसु कंदो आहे त मां सुबुह कमु कई थकी वियो आहे तॾहिं। हिकिड़ी ॻाल्हि त आम बीमारी इहा थी वई टाइफाइड, मोदे जो बुखारु, ज़ाहिरु थिए थो, ख़बर नथी पए सिज लहण खां पोइ ज़ाहिरु थिए थो, ऐं माण्हू चवंदा सुबुह खां वठी कमु कयो, थके थकी वियो, आरामु कर, मानी खा, चांहि पी, आरामु कर। हिकिड़ी बीमारी इहा आहे। इन खां अलावा बी जेका बीमारी आहे त जेका असां महसूसु नथा करे सघूं असांजे जिस्म में आहे उहा आहे हार्मोन्स जो डिसबैलेंस थी वञनि. हार्मोन्स हार्मोन्स छा आहे? हार्मोन्स टाइम ॾिसूं त हा पंज मिंट आहिनि त पंज मिंट. हार्मोन्स छा आहे? डिसबैलेंस जो थी वञनि. हार्मोन्स असांजे जिस्म में जेका फंक्शन्स हलनि पिया जीअं दिमाग़ जो फंक्शन, यादाश ऐं उन खां अलावा सोच वीचार, पेशाब जो अचणु ख़बर पए अचे पियो या छा, हीअ सभु जेका कम किरदारु हलनि पिया न इहा हार्मोन्स जे मथां आहिनि. हार्मोन्स जेॾी महिल ठीकु रहंदा त सॼो फंक्शन असांजे जिस्म जो ओके हलंदो. ईअं सम्झाइण जे लाइ अव्हांजे लाइ जेका गाॾियुनि जा मिस्त्री हूंदा उन्हनि खे मिंट में सम्झ अची वेंदो. हार्मोन्स इहा आहिनि त जेको तव्हांजे जिस्म में लॻल फ्यूज़ आहिनि, फ्यूज़ जेका गाॾी में लॻल हूंदा आहिनि उहा फ्यूज़ आहिनि असांजे जिस्म में हार्मोन्स आहिनि. फ्यूज़ सड़ी वेंदा, कम न कंदा, हॉर्न न वॼंदो, रेडिएटर जो पखो न हलंदो, स्टेरिंग बि जेको आहे चाबी गाॾी स्टार्ट न थींदी, हार्मो फ्यूज़ मटाईंदो हर शइ थी पवंदो. त हार्मोन्स बि असांजे जिस्म में इहो ई कमु किरदारु कंदा आहिनि, हर शइ खे कंट्रोल कंदा आहिनि. जेॾी महिल इहा बैलेंस अनबैलेंस थींदा त असांजो जिस्म थुलो थी वेंदो, सन्हो थी पवंदो, गुदूद वधी था वञनि, टोंसिल वधी था वञनि, गले में वारा जेके गुदूद आहिनि उहा वॾा थी था वञनि ऐं याददाश्त, सोच, वीचार, ॻाल्हियूं वग़ैरह सभु शइ ख़तमु थी थी वञे. इहे हार्मोन्स जी निशानियूं आहिनि पर असांखे सम्झ में नथी अचनि.
1: सर तमामु बहितरीन. सर आख़िर में असांजे सामान जे लाइ पैगाम कहिड़ो ॾियणु चाहींदव?
0: सवाल ख़तमु थी विया, मुबारक
1: जी सर. सवाल ख़तमु थी विया, अलहमदिल्लाह. इनशा
0: आख़िर में असां पैगाम अव्हां जे लाइ इहो ई ॾींदासीं. अॼोके प्रोग्राम में असां अव्हां जी हिकिड़ी बि कॉल रिसीव न कईसीं. उन जी वजह छा हुई त अॼु जेका असांजी कचहरी हुई न प्रोग्राम में, उहा कचहरी एतिरी हुयूं त अव्हां जे जेका नॉलेज जे लाइ हुयूं. सवाल अहिड़ा हुआ त जेको अव्हां खे उन जे बारे में ज़रूरु ॿुधणो आहे, सवाल ऐं उनजो जवाबु. त इन शइ जे करे असां अॼु कॉल रिसीव न कईसीं त जेका कॉल वारा हुआ, को अहिड़ो एमरजेंसी आहे या को अहिड़ो पेशंट आहे जंहिंजो इलाजु वग़ैरह कराइणो आहे त उहो परेशान न थियनि. सुबुह जो 9 खां वठी शाम 6 वॻे ताईं क्लिनिक खुलियल हूंदी, अव्हां बेफ़िक्र थी अची सघो था, इलाजु कराए सघो था, को मसिलो कोन्हे. को होम्योपैथिक में हर मर्ज़ जो, हर बीमारी जो इलाजु थींदो आहे, सवाइ अहिड़ा मर्ज़ जेको हाणे ज़रूरत आहे ऑपरेशन जी, त उनखे असां कंट्रोल नथा करे सघूं. ऑपरेशन खां पहिरीं असां वटि अची वञे हा त बाबा हाणे तकलीफ़ आहे त इलाजु कयो त मतिलबु मुंहिंजो ऑपरेशन थिए, उन खां मां बची वञा, त उन टाइम ते इहा केस असां ऑपरेशन वारा करे वेंदा आहियूं. बाक़ी हाणे ऑपरेशन ई जो हल आहे त उहो असां डॉक्टरी में होम्योपैथिक में असां कोन था हलाए सघूं केस खे, उन जे लाइ ऑपरेशन ई करणु. त बाक़ी जेका केस आहिनि उन जे बारे में तव्हां बेफ़िक्र थी अची सघो था, इलाजु वञो कराए सघोसि था. सामिन प्रोग्राम में असांजे लाइ बहितरीन शयूं इहो ई हुयूं, जेका सवाल हुआ उन्हनि जा जेका जवाबु हुआ ऐं अव्हां जे लाइ जेको सम्झाइणी हुई, अव्हां जा जेका तकलीफ़ुनि जे बारे में ॿुधाइणो हो, उहा सभु मुंहिंजी कोशिशि रही त कुझु शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेका बीमारी जे हवाले सां हुयूं. अॼु जे प्रोग्राम में कुझु शयूं अहिड़ियूं हुयूं त जेका घरनि में आम आहे पर असां सोचियूं वीचार उन ते कोन था कयूं, त उन्हनि शयुनि खे बि अॼु असां हाईलाइट कयोसीं. कंहिंखे ॻाल्हि ग़लति लॻे त माज़रत, पर हक़ीक़त ज़रूरु आहे. इन्हनि ते तव्हां सुकून सां बि सोचींदव त मुंहिंजी ॻाल्हियूं कड़ियूं न लॻंदियूं. अव्हां उमेदु आहे त अव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम में अॼु जे प्रोग्राम में ॾाढो मज़ो आयो हूंदो, नॉलेज तव्हांखे ज़रूरु मिली हूंदी, इंफॉर्मेशन ज़रूरु मिली हूंदी. को प्रोग्राम बीमारी आहे उनजो इलाजु ज़रूरु करायो, होम्योपैथी ज़रूरु करायो. इनशाला होम्योपैथी दवा सां, इलाज सां अव्हां मायूस न थींदव. कोशिशि असां कंदासीं, कोशिशि अव्हां कजो, शिफ़ा अलाह ज़रूरु ॾींदो. सामिन प्रोग्राम जो टाइम ख़तमु, वे प्रोग्राम ताईं मूंखे ॾियो इजाज़त. सुभाणे मां उमेदु कंदो नादिर साहिबु को 15-20 सवाल खणी ईंदा.
1: सामिन अॼु जी हिन ख़ूबसूरत ऐं ॼाण भरी कचहरी जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो. उमेदु त अॼु जे प्रोग्राम मां अव्हांखे सिहत बाबति केतिरियूं अहम ऐं कारायतियूं ॻाल्हियूं सिखण लाइ मिलियूं हूंदियूं. असांजे मौजूदु महिमान डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहिबु, जिन जा दिलि जी गहराइयुनि सां थोराईता आहियूं, जिन पंहिंजे क़ीमती वक़्त मां वक़्तु कढी असां सां पंहिंजे इल्म ऐं तजुर्बे जूं ॻाल्हियूं वंडियूं. आख़िर में दुआ आहे त अल्ला पाक अव्हां सभिनी खे सुठी सिहत, ख़ुशियूं ऐं कामयाबी अता फ़रमाए. पंहिंजो ऐं पंहिंजे प्यारनि जो ख़्यालु रखो, छो त सिहत ई ज़िंदगी जी सभ खां वॾी दौलत आहे. सामिन पंहिंजे मेज़बान नादिर अली मक्सी खे पंहिंजे दुआनि में ज़रूरु यादि रखंदा. वरी कंहिं नए मौज़ू, वरी कंहिं नई कचहरी सां वञी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं. तेसीं ताईं ख़ुदा हाफ़िज़. ख़ुशि रहो, आबाद रहो ऐं मुस्कुराईंदा रहो. अल्लाह पाक जे फज़लो अमान में हुजो.

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी बिलावल भुट्टो खां पोइ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहिबाने सदर में मुलाकात ज़रीन मौजिब हुकूमत ऐं पीपल्स पार्टी में बजट बाबति हिक ॿिए जे अक्सर तजवीज़ुनि ते इतफ़ाक़। कुझु नुक़्तनि ते फ़नी कमेटीज़ ॻाल्हियूं जारी रखंदियूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं पीपल्स पार्टी जी बजट कमेटी जा मेंबर सदर सां गॾु मौजूदु। वज़ीर-ए-आज़म जे वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर, नाणे वारी वज़ारत जा अमलदार शामिल। ज़रीन मूजिब सदर ऐं वज़ीर-ए-आज़म विच में मुलाकात दौरान बजट जे मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल। उन खां अॻु वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी विच में मुलाकात दौरान बजट जे मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल थी हुई। ज़रीन पारां वज़ीर-ए-आज़म ऐं सदर विच में मुलाक़ात दौरान बजट मामलनि ते पैदा थियल डेडलॉक ख़तमु करण जा इम्कान ज़ाहिर। वफ़ाक़ी बजट पेश करण जी तारीख़ में ॿीहर तब्दीली जा इम्कान। ज़रीन मूजिब वफ़ाक़ी बजट 10 बदिरां 12 जून ते पेश करण ते सलाह मशवरा जारी। हतमी फ़ैसिलो सुभाणे कयो वेंदो। रिताबंदी जी वफ़ाक़ी पारां बजट जा केतिरा ई मामला अञा तय न थियण जी तस्दीक। वज़ीर अहसन इक़बाल चयो त बजट जे हवाले सां शयुनि खे अञा हतमी शिकिल ॾियणु बाक़ी आहे। अञा तारीख़ुनि में फेरफार थींदी या छा थींदो पक सां कुझु चई नथा सघूं। अहसन इक़बाल चयो त पीपल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग में तरक़ियाती बजट ते ॻाल्हियूं मुकमल थी वियूं। PSDP ते हुकूमत ऐं इतादनि में अंडरस्टैंडिंग आहे। बजट में वफ़ाक सभ खां वधीक फंड्स बलोचिस्तान, पोइ सिंध ऐं टे नंबर ते ख़ैबर पख़्तूनख्वा खे ॾींदो। सिंध में सखर हैदराबाद मोटरवे रिथा हिन साल शुरू कई वेंदी। K4 रिथा लाइ बि वफ़ाक़ी सरकार बजट में फंड्स रखंदी। ईंदड़ माली साल जी बजट जी मंज़ूरी लाइ क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो इजलास अॼु रिथियल इजलास सुभाणे थींदो। थर पार्क में कणक स्टैंडल जी जांच दौरान करोड़े रुपयनि जूं गोबियुनि जी तस्दीक। खुराक खाते बिरप्रखास जे डिप्टी डायरेक्टर जांच रिपोर्ट सेक्रेटरी खुराक ॾांहुं उमाणे छॾी। जांच जो हिसो बणियल डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट आफिसर ऐं बैंक इंतिज़ामिया जा ख़त साम्हूं अची विया। जांच रिपोर्ट में इंकशाफ़ थियो आहे त 2024 ईस्वी जे जून महीने में 11.55 करोड़ रुपयनि जी कणक कोटा ऐं गोबियूं हयूं वयूं। मिठी जो इंस्पेक्टर किशन लाल ऐं अमलो गोबिन जो मुलविस करार। डिप्टी डायरेक्टर मीरपुर ख़ास मूजिबि कणक जूं 94,000 बोरियूं जाली चालान वसीले जमो करायूं वयूं। खुराक खाते जे इंस्पेक्टर पारां ॾेखारियल चालान जी बैंक इंतिज़ामिया तस्दीक करण खां इनकार करे छॾियो। बैंक जे रिकॉर्ड में न चालान हो ऐं न ई का एंट्री थियल हुई। जांच दौरान चकी मालिकनि बि चालान जी तस्दीक करण खां इनकार कयो।

0: जंग बंदी जी हाणियुनि खे भञ किड़ियुनि जी सिधी ज़िमेवारी अमरीका ते आहे। असांखे अॻु ई हुननि जी नियत ते शक हो। इसराइल जे जारहाणनि क़दमनि खे अमरीका जी पॉलिसी खां अलॻि करे नथो सघिजे। ईरान जी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई जी तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्माइल बकाई चयो त 24 कलाकनि दौरान जेकी कुझु थियो आहे हुन जा सफ़ारतकारी ऐं ॻाल्हियुनि वारे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: हैरतअंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-700।
3: जो शहर पंहिंजो घर सकरण ऐं सकरण जो आवाज़
4: GFM 90.8।

0: मिर्जा की हीर देखिए 8 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: काश हमारे पास जैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
3: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: स्मेल जल्द आ रहा है।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

वफ़ाक़ी बजट पेश करण जी तारीख़ में ॿीहर तब्दीली जा इम्कान। ज़रीन मूजिबि वफ़ाक़ी बजट 10 बदिरां 12 जून ते पेश करण ते सलाह मशवरा जारी आहिनि। हतमी फ़ैसिलो सुभाणे कयो वेंदो। रिथाबंदी जी वफ़ाक़ी पारां बजट जा

केतिरा ई मामला अञा तय न थियण जी तस्दीक। वज़ीर अहसन इक़बाल चयो त बजट जे हवाले सां शयुनि खे अञा हतमी शिकिल ॾियणु बाक़ी आहे, अञा तारीफ़ुनि में फेरफार थींदी या छा थींदो पक सां कुझु चई नथा सघूं। अहसन इक़बाल चयो त पीपल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग में तरक़ियाती बजट ते ॻाल्हियूं मुकमल थी वियूं। PSDP ते हुकूमत ऐं इतिहादनि में अंडरस्टैंडिंग आहे। बजट में वफ़ाक सभ खां वधीक फंड बलूचिस्तान ऐं सिंध ऐं टे नंबर ते ख़ैबर पख़्तूनख़्वा खे ॾींदो। सिंध में सकर हैदराबाद मोटरवे रिथा हिन साल शुरू कई वेंदी। केफलो रिथा लाइ बि वफ़ाकी सरकार बजट में फंड्स रखंदी।

अमरीकी सदर ट्रंप जे चवण ते ईरान इसराइल पारा हिक ॿिए ख़िलाफ़ फ़ौजी हमला बंदि करण जो ऐलान। नीम सरकारी ईरानी ख़बर एजेंसी खे जारी कयल बयान में ईरानी फ़ौज चयो त उहा इसराइल ख़िलाफ़ पंहिंजी फ़ौजी कार्रवाइयूं रोके रही आहे। इसराइल जेकॾहिं लुबनान ते हमला जारी रखिया त ईरान सख़्तु जवाब ॾींदो। कातमुन नबिया मर्कज़ी हेडक्वार्टर्स ख़बरदार कयो त ॾखिण लुबनान में हमला जारी रहण जी सूरत में जवाबी कार्रवाई वधीक सख़्तु हूंदी। ईरानी सदर मसऊद पदसिकियान चयो त असां न महाज़ छॾियो आहे न ई ॻाल्हियुनि जो दॻ छॾियो। असांजी तरजीह ईरान जी सलामती ऐं पंहिंजे माण्हुनि जो अमुन आहे। ॿिए पासे इसराइली उहिदेदार चयो त सदर ट्रंप जी दरख़्वास्त ते इसराइल बि ईरान ते हमला रोके छॾिया। हिज़्बुल्लाह इसराइल ते हमला जारी रखिया त इसराइल बेरोत में हमला कंदो। ॾखिण लुबनान में हमला पूरी शिदत सां जारी रहंदा। उनखां अॻु अमरीकी सदर ट्रंप चयो हो त इसराइल ऐं ईरान ॿई फौरी जंगबंदी चाहिनि था। अमुन जे हवाले सां हतमी ॻाल्हियूं जारी आहिनि, पर शर्त आहे त नादानी या हक़ाक़त उन में रंडक न बणिजी। हतमी मुआदो ते थियण ताईं नाकाबंदी बरक़रार ऐं मुकमल तौरु लाॻू रहंदी। मामला तेज़ी सां अॻिते वधणु घुरिजनि।

0: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जूं गिलगित बल्तिस्तान जी आम चूंडुनि में सरसी मिलण ते पीपल्स पार्टी खे वाधायूं, पुरअमन चूंडूं थियण जी साराह। वज़ीर-ए-आज़म चयो आहे त पीपल्स पार्टी अक्सरियती सियासी जमायत तौरु साम्हूं आई आहे, उन ते सदर आसिफ ज़रदारी बिलावल भुट्टो खे वाधायूं ॾियूं था। पुरअमन शफ़ाफ़ चूंडूं ऐं सियासी सरगर्मियूं जमहूरियत जो हुसन आहिनि। वज़ीर-ए-आज़म पारां नवाज़ लीग जी कामयाब उमीदवारनि खे बि वाधायूं। गिलगित बल्तिस्तान जे 24 मां 21 तकनि जी गैर सरकारी ऐं गैर हतमी नतीजनि मूजिबि पीपल्स पार्टी 9 तकनि ते कामयाब। नवाज़ लीग 4 ई आज़ाद उमीदवार 7 सीटूं खटे विया। MWM 1 सीट खटे सघी। 3 तकनि जा चूंड नतीजा जारी न थी सघिया। PTI MWM गिलगित।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: हाणे हैरत अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालेज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99